मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि तदनुसार 15 जून 2026। समय प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के

0: बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन। गुलाब उपदेश नहीं देता, वो तो सिर्फ खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका उपदेश है। महात्मा गांधी। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जब हम सच्चे हृदय से अपने इष्ट को याद करते हैं तो वो हमें हर संकट से उबार देते हैं। तो आइए नमन करें अपने परम पिता परमेश्वर को।

अगर हमारे मन में विकार और नकारात्मक भाव बढ़ते जा रहे हैं तो उससे पार पाने का एकमात्र रास्ता है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम नकारात्मक भावों से पार पा सकेंगे और हमारे जीवन में सकारात्मक भावों का संचार होगा।

जब हमारा मन मोह माया के बंधनों और छल कपट से रहित होता है तभी हम प्रभु भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि जब नीयत अच्छी होती है तभी भक्ति अच्छी होती है।

काम क्रोध और लोभ के अधीन होकर हम खुद को नष्ट कर लेते हैं। इन अवसादों से पार पाने का एकमात्र राह है प्रभु भक्ति की राह।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान से आज का प्रसंग। स्वर हैं श्रीकांत प्रगोनकर और साथियों के।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखा लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनयपूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अंश भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातों में जिक्र करेंगे मधुमक्खी कॉलोनियों की देखभाल। किसान भाइयों, हम कृषि के साथ साथ जो भी व्यवसाय करें, चाहे उसमें मधुमक्खियों का है, चाहे मुर्गी पालन है, सुकर पालन है, डेयरी फार्मिंग है, मछली पालन है, जो भी हम काम करें, एक तो ये रहा हम उसका प्रशिक्षण ले लें, एक जो दूसरे भाई कर रहे हैं उनका अनुभव ले लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण लेने में तो हमें पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा, और अनुभव का भी दूसरे भैया ले तो उसमें और भी ज़्यादा फायदा हो जाए। और ये जीव हैं, ये जीव की तो देखो हमने हर तरीके से उनकी रक्षा करनी पड़ती है भाई, सारी चीज़ों की सुविधा देनी पड़ेगी उनको, तभी जाकर वो अपना पूरा उत्पादन देंगे और हमें फिर उसी आधार पर जाकर फिर फायदा होगा। बात है हमें चाहे देखो कोई भी उसका व्यवसाय करे उसकी करा हाँ, तो उचित देखभाल करके ने और पूरा प्रबंधन करके ने प्रशिक्षण ले लिया और फिर उसके एक तरीके थे सिस्टमेटिक ढंग से हम उसमें कराएंगे व्यवसाय ने, तो हमें जरूर उसमें फ़ायदा होगा। बात हमें मधुमक्खी कॉलोनियों की करा भाइयों, एक ये देखा मधुमक्खियों की भी हमने, जो खासकर गर्मी है, गर्मी में तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ लग रही है, लेकिन ये देखा 2-3 दिन तो चलो रात मिल रही है, जब रात नहीं है अरिबागा के बेरा है कितनी दिन और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, पहले कितनी पड़गी, तो उनकी रक्षा करनी ज़रूरी है, तभी जाकर जब हम उन्हें सुख सुविधाएं देंगे तो अपना उत्पादन पूरा देंगे, शायद हमें पूरा मिलेगा और हमारा जो फायदा है वो निरंतर चलता रहेगा। हाँ, इसमें इतना जरूर रखना है कि हमने उसकी देखभाल में ये देख लेना कि एक तो जो कॉलोनियाँ ने ना अपना बाग बुग में रख लिया तो बढ़िया है, इन दिनों में आपने बेरा है कि भाई उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो भी करनी पड़े, ना तो फूल वगैरह हों होने बाद तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना आप जुटा लेती हैं, लेकिन इन दिनों में फूलों की भी कमी हो गया है, हर जगह कहीं भी फूल नहीं होते, तो इसलिए उनका जो खाने पीने का प्रबंध है वो हमने खुद करना पड़ेगा। सादा पानी रखें साथ साथ में, एक तो छाया में अपनी कॉलोनियाँ रख दें, साथ में थोड़ी बहुत दूर में उनका सादा पानी रख दें। हाँ, एक चीज़ और है, तो उसकी चीनी की चाशनी बनाकर ने भाई वो भी रखें जगह जगह, क्योंकि बताया ना जिस तरह इन दिनों फूल तो होते नहीं, फूल नहीं होते तो उन्होंने अपना भोजन बनाना है, उनके लिए शहद बनाना है, वो चीज़ तो उन्हें चाहिए, तो उसमें अपनी चाशनी बनाकर ने और वो जगह जगह पर वो रख दे, ताकि वो अपना जो शहद है वो बनाते रहे और जो हमारा उत्पादन हमने चाहिए है जिस उद्देश्य खातिर कर रहे हैं उसमें हमारा निरंतर फायदा होता रहे, आमदनी होती रहे उसमें। हाँ, उसमें अब ये देखो गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो देखो भाइयों, आप खुद भी हाँ ज़्यादा गर्मी में रह नहीं सकते, हमें भी तो मतलब छाया चाहिए, पंखा चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें रहना, पानी चाहिए, तो ये भी जीव है, इनके लिए भी ये चीज़ें चाहिए। छाया के लिए हमने बाग में है या कोई बड़ा वृक्ष है उसके नीचे रख लिया अपनी कॉलोनियाँ, आस पास थोड़ी बहुत दूर में उनके बीच में अपना सादा पानी रख दे और चीनी की चाशनी रख दे, ताकि वो अपना पानी भी पिए जा और चीनी की चाशनी से वो अपना शहद भी बनाए जा, और उन ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। अगर जब मान लिया एक तो गर्मी पड़े है, दूसरी बात है ये अपना भोजन के लिए उन्हें दूर जाना पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी, वो आक्रामक हो जाएंगी और उसके वहाँ तक ना आ जाए, कुछ सीखते हो इन दिनों में तो ये देखा गया इतनी गर्मी में और दूर तक जाना पड़ेगा, उन्हें उड़कर जाना पड़ेगा तो उनकी मौत भी हो सके, और अगर जब मान लिया उन्हें दूर जाना पड़ गया तो वो उत्पादन है शायद का वो पूरा नहीं दे पाऊँ, इसलिए हमारा जो ये काम उसी टाइम पर सही रहेगा जब हमने ये काम अपना कराया है, व्यवसाय कराया है, इस व्यवसाय को हमें एक वैज्ञानिक तरीके से जो वैज्ञानिक बताए हैं उसका तरीका हम कराएंगे तो हमने उसमें फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। गर्मी के दिनों में आप ये देखो ना ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी पड़े है, दूर तक जाना पड़े है, इसलिए उनके पास पानी रखें, छाया में उनकी कॉलोनियाँ रख दें और साथ में चीनी की चाशनी बनाकर जरूर रख दें, ताकि उन्हें अपना भोजन भी वहीं मिल जाए, छाया भी वहीं मिल जाए और पानी भी एक ही जगह मिल जाए, दूर ना जाना पड़े। तो इन मोटी मोटी बातों भाइयों हम ध्यान रखेंगे तो मधुमक्खी कॉलोनियों की देखभाल करके ने अच्छी आमदनी ले लेंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को है। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृतचर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांसदेशस्य नीसनगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30,000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स् संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270,000 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26,000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् ICC 20x20 विश्वचषकक्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन् नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात 9:30 बजे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक प्रसारित होगा। शाम 7:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में विदेश नीति पर बातचीत। ये दोनों कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अरंड की काश्त विषय पर डॉक्टर आत्मन पुनिया के साथ की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे शाम 6:20 पर। कार्यक्रम रहेगा कृषि जगत।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7:15 पर प्रसारित होगा दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी की तोड़ी। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10 बजे आप सुनेंगे दीपा शर्मा का बजाया राग यमन।

सुबह 8:30 बजे लोक संगीत कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे गुलाब सिंह खांडेवाल। फिल्म संगीत का लुत्फ आप ले सकेंगे। हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9 बजे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम में, दोपहर 1:10 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हमारी दूसरी प्रसारण सभा के तहत, शाम 7:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत में, 9:15 पर रात एक फिल्म से कार्यक्रम के तहत और रात 10:30 कार्यक्रम मन चाहे गीत में। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी की तौड़ी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुना दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी की तोड़ी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, घर में बड़े बुजुर्गों का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। ये न सिर्फ पारिवारिक एकता को मजबूत करता है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और जीवन मूल्यों के लिए भी फायदेमंद है। जब घर में दादा दादी या नाना नानी होते हैं, उनसे बच्चे धैर्य, ईमानदारी, बड़ों का आदर करना जैसे जीवन मूल्य सीखते हैं। बच्चे अकेलेपन से बचते हैं, साथ ही अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों से पारिवारिक इतिहास के बारे में गहराई से जान पाते हैं। पर आज भाग दौड़ और रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाने की होड़ में हम अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, यानी अपने बड़े बुजुर्गों को बोझ समझकर उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि माँ बाप ने जिनने हमें जन्म दिया, जीवन से रूबरू करवाया, हमें जीना सिखाया, हमारा पालन पोषण किया, एक काबिल इंसान बनाया, वही हमें बोझ लगने लग जाते हैं। उनका हमारी बेहतरी के लिए कुछ भी कहना हमें अपनी आज़ादी में खलल लगता है। उसका परिणाम ये होता है कि घर की चार दीवारी से निकलकर वो हमारे पूज्य लोग वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर हो जाते हैं। जिन माता पिता ने लाड प्यार से हमारा जीवन संवारा, जीवन के हर मोड़ पर हमारा सहारा बने, उन्हीं माता पिता को जरूरत के समय हम अकेला छोड़ देते हैं, जो कि आज एक आम बात है। प्यार के दो बोल के लिए तरसते वो माँ बाप दूसरों के सहारे पर छोड़ दिए जाते हैं। जहाँ अपने बच्चों के प्यार के लिए उन्हें देखने तक को वो तरस जाते हैं। आज बढ़ते वृद्ध आश्रम की संख्या हमारी पीढ़ी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि क्या इसको ही आधुनिकता या नवाचार कहा जाता है, जहां हम अपने माता पिता को दो प्यार भरे शब्द नहीं बोल पाते, उनके साथ समय नहीं साझा कर पाते, उन्हें बोझ समझते हैं, उनका निरादर करते हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारे संस्कार हैं? इसी बात पर प्रकाश डालने और देश समाज को इस कुरीति को दूर करने के लिए, जागरूक करने के लिए आज का दिन यानी 15 जून को हम सब विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मना रहे हैं। ये दिन हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है कि कैसे अपने आज के कामों से हम अपने आने वाले कल को खराब कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जो बच्चे आज हमें अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता देख रहे हैं, क्या कल वो हमारा साथ देंगे, हमारे साथी बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही ये दिन हमारे बड़े बुजुर्गों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, उन्हें सिखाता है कि वो जीवन के हर सबक से वाकिफ हैं, जीवन में हर तरह का समय उन्होंने देखा है, उससे पार पाया है, तो वो हार ना माने, उसी जद्दोजहद से बाहर निकलकर अपने जीवन को हंसी खुशी के साथ अपने दम पर बिताएं।

श्रोताओं, आज एक और विशेष दिन हम मना रहे हैं, वो है विश्व पवन दिवस। विश्व पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड विंड डे भी कहा जाता है। यूरोपियन पवन ऊर्जा संघ ने साल 2007 में इस पर्व को पहली बार मनाया। बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सहयोग से इसे अलग अलग आयोजनों के माध्यम से विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। दोनों संगठनों द्वारा ये तय किया गया कि विश्व भर में इस दिन पवन ऊर्जा के महत्व से लोगों को अवगत जरूर करवाया जाएगा। इस दिन पवन ऊर्जा को दैनिक जीवन में उपयोग करने, वातावरण से कार्बन की मात्रा को कम करने और विश्व भर में ऊर्जा पवन उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोगों को पवन ऊर्जा के इस्तेमाल और इसके द्वारा मिलने वाले लाभों से भी रूबरू करवाया जाता है। बढ़ती आबादी के चलते भारत ने भी अक्षय ऊर्जा के महत्व को समझा और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा यानी चौथे स्थान पर बड़ा देश बन गया, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान तमिलनाडु का है। विश्व पवन दिवस हम मनाते हैं ताकि पवन ऊर्जा के महत्व और संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। इसका आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसलिंग द्वारा किया जाता है ताकि ये दिखाया जा सके कि पवन ऊर्जा स्वच्छ बिजली उत्पादन में कैसे सहायक हो सकती है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकती है, कैसे टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा दे सकती है। ये दिन लोगों को जलवायु परिवर्तन से निपटने, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की ओर वैश्विक बदलाव लाने में पवन ऊर्जा की भूमिका को समझाने में सहायता करता है, उन्हें अवगत करवाता है।

हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है, मत होश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है। कर लेना किसी

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम को समेटने का, तो दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रसारित होंगे। पहले हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही

0: हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
5: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए

0: करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Kaumudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
6: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit by Mr. Modi follows President Draupadi Murmu's state visit to Slovakia in April last year and Slovak President Peter Pellegrini's visit to India for the AI Impact Summit in February this year. The visit reaffirms India's commitment towards strengthening its bilateral relationship with Slovakia in various sectors, including trade, investment, and automobile and railway manufacturing. Our correspondent reports that upon his arrival in Bratislava, Mr. Modi was given a warm welcome and accorded a traditional Slovak hospitality.
7: Prime Minister Narendra Modi was received by Slovak Foreign Minister Jure Blanar upon his arrival in Bratislava last night. Members of the Indian diaspora gathered in Bratislava welcomed him with slogans upon his arrival. Slovak musicians of the Lutnica ensemble performed Vande Mataram on the Prime Minister's arrival. Sri Narendra Modi will be accorded a ceremonial welcome today in Bratislava. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava.
6: The 52nd G7 summit will begin at Avignon in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. His participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. India is important for the G7 as a premier economic powerhouse, a diplomatic bridge to the developing world, and a strategic anchor in the Indo-Pacific. A report from our correspondent.
8: As the summit gets underway, reducing global imbalances has emerged as the central priority of the host nation's G7 presidency. According to the official summit framework, leaders will deliberate on geopolitical challenges, international peace and security, balanced economic growth, and key global crises during the closed-door sessions beginning today. Prime Minister Narendra Modi will participate in the outreach sessions tomorrow. India's participation in the summit will provide an opportunity to highlight the priorities and concerns of the Global South while contributing to deliberations on key global issues. Ankit Kumar, Akashvani News, Avignon, France.
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Commercial flight services from the Noida International Airport, located at Jewar in Gautam Buddh Nagar of Uttar Pradesh, began this morning. Our correspondent has filed this report.
0: Built in Jewar along the Yamuna Expressway Industrial Development Authority region, the airport was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on March 28 this year. The land acquisition for the airport spans around 1,334 hectares, which is nearly 3,300 acres. The airport, which has been developed as a major aviation hub, will have initial passenger

तेरा गजब सताराई चमके हेरी तेरा त गजब।

झगड़े तजे धूप छाया के कट जा ये रोग सकल काया के आ कट जा ये

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं गुलाब सिंह खांडेवाल।
1: लाइफ फास्ट मोड।
3: जिस

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थे गुलाब सिंह खांडेवाल। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सभी को किरण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे साजन फिल्म के गीत के साथ। आवाज़ है SP बाला सुब्रमण्यम की और पसंद आप सभी की। मोहला हिसार से राजकुमार ढोचक, गीता, अमन, सानिया, सुभाष, राहुल, रोहित, जोगेंद्र, दर्शना, इंदु, यक्षित। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता। करमपुरा दिल्ली से कविता, गौरव, मानसी, अनिल मदान। फुल चिंचौली पंठरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबहान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर मुलानी, बाबू बी मुलानी और बादशाह। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं साजन फिल्म का गीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में गीत आपने सुना साजन फिल्म से। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से गीत आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा था रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हर्षित खुशी गोस्वामी, हनुमानगढ़ से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला लीलाधर शर्मा, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदूरकर तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, शौर्य श्रेयस अंकिता अनिकेत चौहान, कैथल से मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू, भिवानी से इस गीत की फरमाइश की थी जितेंद्र खेड़ा ने। अगला गीत आपको सुनवाएंगे खुदगर्ज फिल्म से मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत लिखा इंदिवर ने, पसंद आप सभी की। कैदी मुंडा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह, रीतु सिंह, धनकाद झारखंड से अमित कुमार सिंह, पूजा रवि, आरती सिंह, पटना बिहार से भुवनेश्वर, मोनू लीलू, गांव 34 एसटीजी पीली बंगा से अमन मेहरा, समर मेहरा, रीतु मेहरा, बिशन लाल मेहरा, करणपुर राजस्थान से शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल सेठी, ज्योति शब्द सेठी, बानी और राजू, रोहतक से महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र, हर्षित और मानसी शाह। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं खुदगर्ज फिल्म का गीत।

खुदगर्ज फिल्म से गीत आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद अजीज़, साधना सरगम और साथियों की। आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंक, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। जी विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

हम तुम पे मरते हैं फिल्म से गीत आपने सुना उदित नारायण, शोभा जोशी और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा था लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी कुंती साहू, कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, साईं गायकवाड़, वासिम मनोरा से ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति तेजस गिरी और प्रणित, पुणे महाराष्ट्र से शैलेंद्रपुरी सोनम धनुष गिरी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजेश जाधव, प्रशांत राजेश जाधव, संचित वायला, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद और सानवी देशमुख। खंडवा से इस गीत के लिए फरमाइश की थी किशोर सांबले, रेखा सांबले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारवी, प्रणत सांबले ने। अगला गीत आपको सुनवाएंगे हातिम ताई फिल्म से आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। दतरंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नॉर्वे लाल वर्मा, साल्याखेड़ी मालवा आगरा से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, वासिम महाराष्ट्र से रिचा वसमतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्वनी कुलकर्णी, कल्पना, सुनीता पांडे, मालती कंझरकर, संगीता और उषा रिंगाटे, छाया बोरकर, तृप्ति श्रृंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू और जीतू। छोटी बलिया करजत मुंबई से इस गीत को सुनना चाहा है अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नसरीन, ईरान अहमद, नुरैशा अहमद और जूही इकबाल ने। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हातिम ताई फिल्म से ये गीत अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में।

हातिम ताई फिल्म के बाद आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत सुनवा रही हैं शेषनाग फिल्म से। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, गंग डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, जिला खरगोन सनावद उत्तर प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा आदुलपुरा गोगांव से, पद्मा टाकिच नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, मालियान सरगना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जिव्यम जैन। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं शेषनाग फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रहता।

0: है सदा तत्पर, हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नाकाबंदी फिल्म से, आवाजें शब्बीर कुमार आशा भोसले की, पसंद आप सभी की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, नरेंद्र तनेजा, जग्गी दुआ, संदीप बुगलानी, किरण ठाकुर, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, इसप्रीत शर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। दौलताबाद मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। रोहतक जनता कॉलोनी से सुरेंद्र कुमार जैन, और इसी गीत के लिए महाराष्ट्र से खत भेजा है बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी, और पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या और प्रियंका ने। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर नाकाबंदी फिल्म का ये गीत।

नाकाबंदी फिल्म से गीत आपने सुना। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनवाएंगे आवारगी फिल्म से। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर चकला बाजार समाना से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल हसमुख जिंदल, जतू का किशनपुर से आलम दिलकर शवाना नाज, रिजवान राही इमरान राजा, आलम शेख शवाना आलम चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, ताज मंजिल खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, ग्राम दिवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराड़े, जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदवठे, आरती जोंदवठे, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। इसी गीत को मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से सुनना चाहा है अभिजीत गवहानकर, सविता गणवानकर, एकांश गवहानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, आकार हाइट्स बहादुरा, नागपुर से

वैशाली शैलेश गवानकर, श्वेता सुमित गवानकर, ध्वनि गवानकर, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहानी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में आवारगी फिल्म का गीत।

0: इसी गीत के साथ संपन्न होता है पत्रों पर आधारित फरमाइशें फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में 10:05 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मूज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मूज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए, एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The United States and Iran has finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
4: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
3: UN Secretary General Antonio Guterres has welcomed the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, reopening of Strait of Hormuz, as well as a framework for further negotiations. Secretary General spokesperson Stefan Zurich said that this represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to the country after completing the first leg of his visit to Nice in France. In a social media post, Mr. Modi said, "This visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Ivan in France today. The three-day event is being attended by G7 members, including Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. Mr. Modi's participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. Union Minister for Ministry of Road and Transport and Highways, Nitin Gadkari, will visit Shillong today to participate in key events focused on infrastructure development and connectivity in the Northeast region. The Union Minister will inaugurate the Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition, NEII-NFRA 2026, today at the Larathi Performance Centre in Mwaka Siang, Shillong. He will also attend the CEO's roundtable at the NEII-NFRA, which serves as a premier platform for discussions on infrastructure development, investment opportunities and regional growth, bringing together policymakers, industry leaders, investors and other stakeholders from across the country. India Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam, Meghalaya during next 6 to 7 days. Parts of northeast India and West Bengal will witness heavy rainfall today. The Met Department said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Orissa, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during next 4 to 5 days. In ICC Women's T20 World Cup opener, India defeated Pakistan by 64 runs in Group A match at Edgbaston in Birmingham last night. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर दोपहर 12:30 पर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 262.47 मीटर, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है दोपहर के 12:30। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है, भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
2: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
3: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो

0: निकाल कर दूं?
1: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
0: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
1: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
0: तो फिर?
1: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे! ओह,
1: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
1: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुन।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
1: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
1: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
1: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी,
1: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
1: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
6: अप्पू!
1: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
1: उसका दम घुट रहा था।
6: बोल।
1: वो खामोश खड़ा रहा।
6: क्या नहीं बोलेगा?
1: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
6: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
1: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
6: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
1: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
6: हाँ हाँ,
1: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
6: कंचा?
1: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
6: स्टैंड अप।
1: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
1: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
6: किसी को शक हो तो पूछ लो।
1: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
6: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
1: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
6: अप्पू, क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
6: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
6: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
6: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
6: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
1: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
1: चपरासी एक नोटिस लाया।
7: मास्टर जी, नोटिस है।
6: लो।
1: मास्टर जी ने कहा,
6: जो बच्चे फी

0: लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
1: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
2: ओए,
1: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
1: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?
1: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
0: फीस मत देना,
1: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
0: ऑन द बेंच।
1: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
1: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों, एक एक करके आओ।
1: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
2: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
1: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
1: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
4: जी मास्टर जी।
1: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?

0: सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
1: अच्छे कंचे हैं ना?
2: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
1: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया, वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
1: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
1: दे दो।
2: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
1: माँ!
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई,
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं।
4: अभी आपने सुना NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और उसके ठीक बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में पूर्ण रूप से बर्बाद दुकानों के मालिकों को 5-5 लाख रुपए, बाकी दुकानों के मालिकों को 2-2 लाख रुपए और जली रेहड़ियों के मालिकों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में तबाह हुई दुकानों का निरीक्षण करने के उपरांत प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री अग्निकांड में मारे गए कपिल, सौरभ व अमन के घर भी गए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। शहरी स्थानीय निकाय के रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का ही देन है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दी गई। उनके नेतृत्व में देश में व्यापक बदलाव आए हैं। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रविवार को भिवानी के गाँव सुहासड़ा में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए वो भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। सांसद ने कहा कि 2014 से पहले और बाद के भारत का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन 12 वर्षों में क्या बदलाव आया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कल देर शाम फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित सन फ्लैग चौक के सौंदर्यकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 16 मार्केट के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार हो चुकी है।
1: सेक्टर 16 की मार्केट है, उसको एक मॉडर्न मार्केट किस तरीके से बनाया जाए उस पर काम चल रहा है। डीपीआर बन गई है, बजट पास हो गया है, उसका टेंडर लगा हुआ है, जल्दी खुल जाएगा, 1-2 महीने के अंदर उसका काम शुरू कर देंगे। और फरीदाबाद के अंदर बड़ी दिक्कत आती है, जब आंधी आ जाए, बरसात आ जाए, तेज हवाएं चल जाए, लाइट गुल हो जाती है, जितनी भी ये तारे हैं सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी।
0: उन्होंने कहा कि बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 2,200 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। श्री विपुल गोयल ने जल भराव की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। केंद्र सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत फरीदाबाद में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, फरीदाबाद जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद सभी ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसे लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और शुद्ध पर्यावरण स्वस्थ समाज की आधारशिला है तथा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करे। आज सोमवती अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर तड़कसार ही देश के विभिन्न राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। सरोवर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा तृप्ति के लिए पिंडदान और जल तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान और दान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। स्नान के साथ साथ ये दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान हेतु भी बेहद विशेष माना जाता है। जींद जिले के ऐतिहासिक एवं महाभारत कालीन गाँव पांडु पिंडारा में पवित्र पिंड तारक तीर्थ पर आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर विभिन्न प्रांतों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान व तर्पण किया। तीर्थ परिसर और आसपास में लगे मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी भी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में इस गीत के साथ, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। फिल्म का नाम क्योंकि

अभी आपने सुना फिल्म क्योंकि से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, शब्द रचना थी समीर की और संगीत था हिमेश रेशमिया का। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है फैज़ अनवर ने और संगीतबद्ध किया है निखिल और विनय की जोड़ी ने। फिल्म का नाम कोई मेरे दिल में है।

अभी आपने सुना फिल्म कोई मेरे दिल में है से ये शीर्षक गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था फैज़ अनवर ने और संगीतबद्ध किया था निखिल और विनय ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म शिखर से। गायक कलाकार सोनू निगम और श्रेया घोषाल, गीतकार देव कोहली, संगीतकार आनंद राज आनंद।

0: आकाशवाणी रोहतक से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, शान और अलका याग्निक की आवाजों में। शब्द रचना संजय छैल की, संगीत हिमेश रेशमिया का। फिल्म का नाम इश्क है तुमसे।

अभी आपने सुना शान और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म इश्क है तुमसे से ये गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म ओम जय जगदीश से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: अभी आपने सुना के और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में फिल्म खट्टा मीठा से ये गीत। इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने और इसकी धुन तैयार की थी प्रीतम ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आइए सुनते हैं फिल्म बागवान से ये गीत।

अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म बागबान से ये गीत। बोल थे समीर के, संगीत था आदेश श्रीवास्तव का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। गायक कलाकार श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार विशाल और शेखर।

0: के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
5: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
6: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
7: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के

0: बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: ज़मीन की उल्टा पलटी हो जाए तो उससे ज़मीन की ताकत है वो बने है। और देखो भाई, आज अपना जो विषय है वो है भाई, जो कृषि आधारित श्रम रोज़गार अपनाना, इस विषय पर। इसमें जहाँ तक हम बात करें भाई, खेती बाड़ी से संबंधित जो हम रोज़गार शुरू करना चाहें, उसमें कई रोज़गार हैं जो हम कर सके हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जा सके भाई, जो डेयरी फार्मिंग है वो हम कर सके हैं, मशरूम की खेती हम कर सके हैं, उसका उत्पादन कर सके हैं। भले ही ये गर्म हो, लेकिन कई बार हमने बड़े क्षेत्र में करना पड़ जाए तो उसके लिए जो खेत हैं, जो खेती की जगह है, वो उसमें सुरक्षित और अच्छी मानी गई है। और जहाँ तक हम बात करें जैविक खेती की, जैविक खेती भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और उस विकल्प के रूप में ये कहा जा सके भाई, आज बहुत से जो हमारे किसान भाई हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद से जो खेती है वो करना चाहते हैं, लेकिन कई भाई ये हैं भाई बना नहीं पाते या कुछ और कारणों है, तो उन सब चीज़ों का एक जगह पर, जैसे हम ये कहें कि भाई हम उसको बना के और बेचें, उसमें हमारे पास पशुओं का होना बहुत ज़रूरी है, या जो कुछ वेस्ट जो हमारा हमारी चीज़ें जा रही हैं, मुख्य रूप से जो ये पशुओं से संबंधित है, उसमें भले ही हरा चारा हो, गोबर की खाद हो, तो ये सारी की सारी चीज़ इसमें वर्मी कंपोस्ट में काम आवेंगी और खाद इसके लिए बनाऊंगी। और जब ये खाद बनाऊंगी और अच्छी मात्रा में बनेगा तो हम खुद का काम भी चला सके हैं, और जो हमारे दूसरे किसान भाई हैं जो इसमें जैविक खेती के करना चाहते हैं, तो वो भी उसको मोल ले सके हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं जो इससे खाद को बनाएंगे, वो उनका इसमें रोज़गार भी अच्छा चल सके है। बाकी हरियाणा प्रदेश में भाइयों, ये कहा जा सके है जो खेती है उससे जुड़े हुए अनेकों विकल्प हैं, उनमें जैसे मधुपालन की हम बात करें, मुर्गी पालन की बात करें, अनेकों ऐसी योजनाएँ हैं, ऐसे काम हैं जिनको यदि हम शुरू करेंगे तो फिर ये कहा जा सके है कि भाई हम खेती के साथ जुड़कर बहुत सारे जो फायदे हैं वो उठा सके हैं। और जहां हम रोज़गार की बात करें, खेती में रोज़गार के बहुत ज़्यादा विकल्प हैं। उन विकल्पों में जो मुख्य रूप से हैं ये हैं कि भाई जो खेती के प्रोडक्ट बने हैं उनको हम रोज़गार के रूप में अपनाएं और उनको बनाएं, खुद भी उसमें रोज़गार करें, और भी अनेकों भाई जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं उनको भी इसमें रोज़गार मिल सके है। एक चीज़ ये निकाला जा सकता कि भाई जो खेती से बनने वाली मान लो एक चीज़ है, उससे अनेकों चीज़ बना के भी हम उसमें बेच सके हैं, और जो खेती से संबंधित खुद का भी और जो दूसरे हमारे साथ हमारे जो भाई हैं उनको भी हम रोज़गार दे सके हैं। इसमें जहाँ तक हम बात करें भाई, एक जैसे वर्मी कंपोस्ट की हम बात करें, इसमें लागत बहुत कम है और लाभ बहुत अच्छा है। ये बहुत कम पूंजी से शुरू हो गया है, क्योंकि इसका जो हम शेड बना रहे हैं वो बहुत थोड़े पैसे में शुरू हो गया है, और जो हमारे पशुओं का गोबर है उस गोबर को हम उस शेड में डालकर और अच्छे से जो नमी है वो बना लें। और इसको बनाने के लिए देखो, पहले तो हमने ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो बगैर ट्रेनिंग के हमने नहीं करना है। यदि बगैर ट्रेनिंग के यदि हम उसको करेंगे तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाएगी, और चूक होने से हमारे को नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो लागत है वर्मी कंपोस्ट खाद में बहुत कम है, और इसमें लाभ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई हैं ये सोचते हैं कि भाई खेतों में जो जहर है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसकी जगह पर हम जो जैविक खेती हैं उसको आगे लावें, उसको बढ़ावा देवें। लेकिन हर एक किसान भाई जैविक जो खाद है वो तैयार करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके लिए पशु का गोबर है वो चाहिए, उसके लिए अनेकों वेस्ट चीज़ें हैं वो चाहिए, वो हर एक के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो खेती जरूर वर्मी कंपोस्ट की करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों की पूर्ति के लिए हम वर्मी कंपोस्ट जो खाद है उसको बना सके हैं, और उसके लिए गोबर चाहिए हमने, केंचुए चाहिए, और एक बेड चाहिए। बहुत कम मात्रा में जो खर्चा है वो इसमें बना है, और जो इसमें फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा इसमें बना है। भाइयों, इसी विषय पर चर्चा तो और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे रागिनी बाली शर्मा और उनके साथियों की गाई हुई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

मेरे दोरे काट नहीं, जो सोच समझ के बात करे वो कदे बारा बात नहीं। देखिए पीठ फेर के

ये उम्र बेताजी पड़ी रही सपारे में और ईसा कितने पति लेना चाहे तो जग सारे में धर्मराज के लिखा हो जा

दिया एके ना लगी चोट तेरे भी इतना दुख होते दू तेरा गण घोट ये पीठ फेर के करे ये सारे ये करे घूंघट की ओट बिन समझे बेकूफ बतावे।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड।

0: सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: मैं यो खेत खलायन कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे भाई, जो कृषि संबंधित स्वयं रोजगार हम कर सके हैं उनके बारे में, और उसमें हमने कहा भाई जो वर्मी कंपोस्ट खाद हम बना सके हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हुआ है, पशुओं से जुड़े हुआ है, और पशुधन का हमारा जो काम है डेयरी फार्मिंग का वो भी खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो डेयरी फार्मिंग की हम बात करें, पशुपालन की बात करें, तो इसमें हरियाणा प्रदेश को हम दूध के मामले में सबसे ऊपर मानते हैं। इसमें अच्छी नस्ल भी हमारे प्रदेश में मिले है। यहाँ का जो दूध है, घी है, पनीर है, उसकी जो नज़दीक के बाज़ार हैं जैसे दिल्ली है या और जो भी अपने जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत अच्छी सी मांग रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें इसमें सरकार की, सरकार भी जो पशुपालन और जो डेयरी विकास बोर्ड है उनकी तरफ से बहुत अच्छी, जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, उनको बहुत अच्छी मदद सब्सिडी के तौर पर कर रहे हैं। इसमें भाई एक मशरूम की खेती और है जो हम साथ के साथ में कर सकते हैं, ये भी खेती के ऊपर ही आधारित है। और इसमें घर की हम बात करें तो एक कमरे में भी हो जाए है, लेकिन उस जगह पर कम हुआ है। जो भाई बड़े अच्छे स्तर पर करना चाहते हैं तो वो अपना अच्छा शेड बनाए हैं और इससे बड़ा फ़ायदा उठाए हैं। इसमें हम बटन मशरूम की बात करें, इससे भी अच्छा जो फ़ायदा है सर्दी के मौसम में हमारे जो किसान भाई हैं वो उठाए हैं। भाई जहाँ तक हम बात करें फल और सब्जी की, इन दोनों की लागत बहुत ज़्यादा है। इसमें चाहे हम टमाटर की बात करें, अचार की बात करें, जैम की बात करें, चिप्स की बात करें, तो ये सारे के सारे जो उत्पादन हैं ये फल और जो सब्जी हैं उनसे बने हैं। और इसमें ये है कि भाई यदि मान लो हमारे पास ट्रेनिंग हमने पहले कर रखी है तो फिर उसके जो ख़राब होने की बात है वो नहीं रहती, उसका जो प्रबंधन है वो हमने खुद करना आ गया है। और जब इन चीज़ों का प्रबंधन मान लो हमने करना आ गया तो फिर निश्चित रूप से यह कहा जा सके भाई हम इसके अंदर नुकसान नहीं कर पाएंगे, उससे हमारे को सिर्फ फ़ायदा होगा। इसमें जो लागत है वो भी फल और सब्जी में ज़्यादा नहीं है जिन किसान भाइयों के पास कृषि की जो ज़मीन है, और फल है या सब्जी है ये दोनों की दोनों चीज़ें हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, इनका उत्पादन भी जब हुआ है तो वो भी एक अच्छा लाभ का सौदा है, और ये भी एक चीज़ खेती आधारित जुड़ी हुई बात है। बाकी जहाँ तक हम बात करें औषधीय पौधों की, ये औषधीय पौधे भी हमारी खेती के साथ साथ जो हमारी खेती करने की तकनीक है वो उसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। भाई देखो एक आम खेती जिसको हम कहें, जैसे मान लो गन्ना लगा दिया, भाई धान लगा दिया, गेहूं लगा दिया, कपास लगा दी, ये जो हमारी खेती ये पुराने समय से चलती आ रही है। लेकिन जो आधुनिक तौर पे हम खेती कर रहे हैं जहाँ से हम फायदा उठाना चाह रहे हैं उनमें बात मुख्य रूप से वो है, इसमें मसाले वाली खेती भी हम कर सकते हैं। उसमें चाहे हम सौंफ की बात करें, जीरे की बात करें, या और अनेकों ऐसी फसलें हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा फायदा उठा सके हैं उसमें। लेकिन हमने एक चीज़ की का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो हम खेती कर रहे हैं उसका पहले हमने ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी तकनीकी स्तर पर कोई भी खेती कर रहे हैं तो उसमें यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है तो फिर उसमें नुकसान होने के बहुत ज़्यादा अंदेशा रहे। इसलिए हमने पहले उसको अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद फिर जो काम है वो करना है, क्योंकि अच्छे से जब काम करना है, अच्छे से जो मुनाफा उठाना है तो वो तभी संभव है भाई जब हम मान लो उसकी पूरी हमारे पास ट्रेनिंग है। खेती बाड़ी से संबंधित देखो अनेकों ऐसे भी मान लो कृषि के यंत्र हैं जिससे हमारी सरकारें सब्सिडी दे रहे हैं, और उससे भी जो हमारे किसान हैं इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अच्छी जो सब्सिडी है वो भी प्राप्त कर रहे हैं और कम पैसे में जो यंत्र हैं वो खरीद ले हैं। तो देखो ज़्यादातर जो हम ये कहें जो खेती बाड़ी से संबंधित हैं और स्वयं रोजगार जिन भैया ने भाई रोजगार एक ये सोचे हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई कर ली और सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी किसान भाई मान लो अच्छा पढ़ा लिखा है वो खुद का रोजगार इस खेती के अंदर से ही ढूंढ सके है, उसमें अनेकों विकल्प हमारे सामने खुले हैं। सिर्फ है हमारी जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है, सरकार के संपर्क में जाने की ज़रूरत है, सरकार की तरफ से अनेकों अनुदान दिए जाते हैं, तो भाई इनका भी हमने फ़ायदा उठाना है। भाइयों ईब सुनेंगे एक रागनी बाली शर्मा और उनके साथियों की गाई हुई।
2: राम जानता मां बेटे मैं

ना अमृत घूट बही थी मेरे लिखे जहर बराबरी तेरे लिखे चीज खरी थी ना कड़वी ना मीठी मेवा ना कड़वी ना मीठी मेवा मन ना तोड़ी चाहिए।

0: कमी चंदे हमारा फैसला उस धर्म राज के होगा।
1: भाई खेत खलिहान जो कार्यक्रम है उसका समय होया समाप्त। शाम ने 6:20 पर भैया ने फिर मिलांगे सारे बण भैया ने। राम राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेत खलिहान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। हालांकि FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर शाम 5:30 पर तीसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी तीसरी सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है दैनिक आयोजन युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपकी साथी हर्ष का नमस्कार
1: और साथियों आपको याचना का भी नमस्कार। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हम मना रहे हैं विश्व बड़ों के प्रति अभद्रता विरोधी दिवस। आज के आधुनिक युग में जहां तकनीक ने मनुष्य को एक दूसरे के करीब लाया है, वहीं अभद्रता, बदसलूकी और असभ्य व्यवहार की समस्या तेजी से बढ़ी है। इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अभद्रता विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को सभ्य, सम्मानजनक और शालीन व्यवहार को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साथियों, जब कोई व्यक्ति दूसरे के साथ अपमानजनक, कठोर या फिर असम्मानजनक तरीके से बात करता है या व्यवहार करता है तो उसे अभद्रता कहते हैं। और यहीं पर अभद्र व्यवहार के पीछे अनेक कारण होते हैं, जिसमें पहले तो संस्कारों की कमी। जब हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं, जीवन में अत्यधिक तनाव के कारण भी व्यक्ति चिड़चिड़ा और अभद्र हो जाता है। और आजकल देखें तो इंटरनेट पर अनामिकता के कारण लोग बिना सोचे समझे अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा याचना आपने, और इसीलिए आज के इस दिन का उद्देश्य यही है कि लोगों को बुज़ुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अभद्रता के प्रति जागरूक करना। बुज़ुर्ग हमारे परिवार और समाज का एक ज़रूरी हिस्सा है। उनके अनुभव और ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज के समय में कई बुज़ुर्ग उपेक्षा, अपमान और दुर्व्यवहार का भी सामना करते हैं और यह एक गंभीर सामाजिक समस्या बन गई है। हमें उनके साथ साथियों सम्मान और प्रेम के भाव से व्यवहार करना चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। और विश्व वृद्धों के प्रति अभद्रता विरोधी दिवस हमें यही संदेश देता है कि बुज़ुर्गों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ पर हर बुज़ुर्ग स्वयं को सुरक्षित और खुश महसूस करे।
1: बिल्कुल हर्ष, अगर हम देखें तो अभद्र व्यवहार का जो समाज पर है वो गहरा नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि जब व्यक्ति का इससे मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इसके अलावा रिश्तों में कड़वाहट और दूरी भी आती है, और अगर देखें तो समाज में इससे हिंसा और अशांति भी बढ़ती है। आजकल हम देखें तो साइबर बुलिंग से युवाओं में भी अगर देखें तो अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए अभद्रता को रोकने के लिए सही संस्कार देना आवश्यक है, आत्मनियंत्रण करना भी अनिवार्य है। और अगर देखें तो सोशल मीडिया पर भी उतने ही सभ्य रहना आवश्यक है जितना आप व्यक्तिगत जीवन में रहते हैं। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को

0: अनिवार्य करना चाहिए। और अंत में देखें तो यह दिवस हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने व्यवहार को जो है वो सुधारें और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं।
1: चलिए साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम हेलो जीनियस। और कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ नियम आप सभी को बता दें। हमसे बात करते समय अपने रेडियो सेट से दूरी बनाकर रखें ताकि आप सभी से सही ढंग से संपर्क बनाया जा सके। हमारे साथी जो कार्यक्रम में जीनियस बन जाएंगे वो दोबारा कार्यक्रम में कॉल ना करें ताकि हमारे अन्य साथियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके और जीनियस बनने का मौका मिल सके। अगर किसी एक प्रश्न का जवाब हमारे दो साथी नहीं दे पाते हैं तो हम उस प्रश्न का जवाब खुद देंगे। और
0: अगर कोई भी एक साथी जो है वो किन्हीं भी लगातार 3 प्रश्नों का सही जवाब दे पाता है तो होगा हमारे कार्यक्रम का जीनियस। और हमसे जुड़ने के लिए जो हमारी टेलीफोन लाइन्स हैं वो खुली रहेंगी, वो रहेंगी 012-62-55-446, 2-55-447 और 2-55-448। और आप सभी के लिए इसी के साथ बढ़ते हुए सबसे पहला प्रश्न है कि सांटोरिनी और कोलंबो वोल्केनोज जो है वो किस देश में स्थित हैं। साथियों, आप सभी को बताना है कि जो ये ज्वालामुखी हैं सांतोरिनी और कोलंबो वो किस देश में स्थित हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम, सतीश बोल रहा था।
0: जी सतीश जी, आपका स्वागत है। आपको बताना है कि जो ये दो ज्वालामुखी हैं सांतोरिनी और कोलंबो वो किन दो देश में स्थित है, किस देश में स्थित है।
2: फ्रांस में मैडम।
0: नहीं, ये जवाब आपका गलत है। आप एक बार
2: फिर तो आपने बहुत बढ़िया दी है मैडम आज।
1: जी, आपको जवाब बताना है प्रश्न का जो हमारा हेलो जीनियस का कार्यक्रम है। याचना हमारे साथियों के लिए प्रश्न एक बार फिर बता दें।
0: हेलो
3: हेलो
0: जी नमस्कार।
3: नमस्कार मैम, राहुल बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, बिट पिलानी शहर।
0: जी राहुल जी, आपका स्वागत है। आपने प्रश्न सुना था।
3: नहीं मैम, नहीं सुना अभी, रेडियो
0: जी
3: किया अभी।
0: जी आपको बता दें कि प्रश्न है कि सांतोरिनी और कोलंबो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है।
3: श्रीलंका।
0: श्रीलंका तो इसका सही जवाब नहीं है।
3: कोई हिंट है मैम।
0: जी बिल्कुल, जो ये देश है वो एक साउथ ईस्टर्न यूरोप में है और जो ये दोनों ज्वालामुखी हैं वो नीचे से एक साथ जुड़े हुए हैं, जो इनका मैग्मा है वो एक ही है।
3: ध्यान नहीं आ रहा मैम, धन्यवाद।
0: प्रयास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए हमारे दो साथी हो चुके हैं और जो इसका सही जवाब है वो रहेगा ग्रीस। साथियों आपको बता दें कि जो ग्रीस है वो विश्व स्तर पर पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, जो लोकतंत्र और दर्शन में अपनी मूलभूत भूमिकाओं के लिए भी प्रसिद्ध है।
1: साथियों आपके लिए अगला प्रश्न है कार्यक्रम में, 2026 महिलाई एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है। आपको बताना है कि भारत में 2026 महिलाई एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप यानी कि इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है। साथ ही साथ इस प्रश्न से संबंधित जानकारी आप सभी को बता दें कि यह चैंपियनशिप मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित की गई थी और चेन्नई की ये रहने वाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल किए और इस जीत के साथ उन्होंने 2027 फीडे महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। और साथियों अभी आपको बताना है कि हेलो
3: हेलो
1: हेलो कार्यक्रम में एक बार
3: फिर बात कर रहा हूँ मैम।
1: जी राहुल, आपने प्रश्न सुना।
3: 2026 एशियाई आगे महिला, इतना ही सुना, आगे नहीं सुना।
1: जी आपको बताना है कि कौन सी महिलाएं जिन्होंने व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जो है जीता है।
3: ये अभी 2026 में हुई थी ये
1: मैम। जी
3: मतलब किस में बताना आपको,
1: आपको उनका नाम बताना है।
3: कौन सी स्पर्धा में मैम।
1: शतरंज। आपको जवाब पता है राहुल।
3: कोनेरू हम्पी गया।
1: जी नहीं,
0: आपको व्यक्ति का नाम बताना है राहुल।
3: नहीं आता, सॉरी।
1: चलिए कोई बात नहीं साथियों, हमने आपसे पूछा है कि वह कौन सी महिला खिलाड़ी हैं भारत की जिनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीती है एशिया की, और इससे जुड़ी हमने आपको अधिक जानकारी भी दी कि ये चैंपियनशिप जो है मंगोलिया के उलनबटोरे में आयोजित की गई थी, और ये जो महिला खिलाड़ी हैं इन्होंने 2027 के पीडे महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
0: और हर्ष, अगर हम अपने साथियों को बताएं तो हाल फिलहाल में जो है चेस के जो टूर्नामेंट हुए थे वो ई स्पोर्ट्स में भी हुए थे, जिसमें जो उनका चैंपियनशिप टाइटल जीता था वो मैग्नस कार्लसन ने जीता था। और इसी से संबंधित हमारा ये एक और प्रश्न है कि हमारा जो महिला खिलाड़ी है भारत की, उन्होंने फिडे चैंपियनशिप कौन सी जीती है और उनका आप नाम बताना है।
1: जी, ये साथ ही आपको बताना है कि महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है 2026 की। और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारी तीन फोन लाइन काम कर रही हैं, नंबर आपको बता दें 2554446, 2554447 और 2554448, और STD कोड है 01262। और अभी हमने आपसे प्रश्न पूछा है कि 2026 महिलाई एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है, आपको उनका नाम बताना है। हेलो हेलो हेलो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। हेलो हेलो।
0: और हर्ष, अगर देखें तो प्रश्न से हटकर कि आजकल जो है वो गर्मी का मौसम भी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर देखें तो बारिश आने के बाद जो गर्मी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हमारे वातावरण में ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जो गर्मी है वो चिपचिपी गर्मी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने घर में कुछ उपाय करने चाहिए जिससे हम गर्मी से बच सकें, और जिससे देखा जाए तो हीट स्ट्रोक जैसी जो है बीमारियां हैं वो भी बन रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है आज ना, बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे बाहर निकलने से पहले जो है कोशिश कर सकते हैं कि हम ढक कर चलें और ऐसे कपड़े पहने जो हमारे शरीर के लिए ठीक हों, और साथ भी पानी भी जो है पीते रहें ताकि डिहाइड्रेटेड ना रहें हम लोग।
0: और इसके अलावा देखें तो हमें जो है ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा याचना, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी साथ ही साथ बहुत बढ़ रही हैं, और उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है अच्छा खाना खाएं, सब्जियों से भरा हुआ, फ्रूट से भरा हुआ, वो सब खाना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। और साथ ही साथ याचना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वो सब भी हमारी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के युवा, हम लोग बात कर रहे थे साइबर बुलिंग की, जो है उसके शिकार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ोन में जो है लगे हुए हैं आज के समय में, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें भी होती हैं। अगर वो बाहर की दुनिया में निकलें, चीज़ें सीखें, समझें, तो बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जो आजकल है एक डूम स्क्रॉलिंग जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं हमारे युवा भी, और जो उनके माता पिता हैं वो भी, अगर देखें तो वो हर समय अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। उन्हें इसके अलावा हटकर जो है अपने फ़ोन को साइड में रखकर जो है कुछ नई आदतें अपनानी चाहिए, इसके अलावा अपनी स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए जो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में काम आएगा और उनकी सफलता के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: बिल्कुल सही कहा याचना आपने। और साथियों, हमारी अगर कार्यक्रमों की रूपरेखा बताएं तो हमारा सोमवार को होता है हेलो जीनियस का कार्यक्रम, बुधवार को करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम रहता है जिसमें करियर से संबंधित हम आपको जानकारी देते हैं और किस प्रकार आप अपने जीवन में एक समझदारी के साथ एक करियर चूज़ कर सकती हैं उससे संबंधित जानकारी हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ शनिवार को हमारा कार्यक्रम रहता है रोज़गार समाचार का,
0: और इसमें हम जो है आपके लिए जो भी रोज़गार उपलब्ध किए गए हैं सरकार द्वारा या फिर किसी भी कंपनी द्वारा, वो हम आप सभी को बताते हैं ताकि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके हिसाब से आप जो है उनमें आवेदन कर सकते हैं।
1: साथ ही साथ कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमारी तीन फ़ोन लाइन आपको बता दें साथियों, जो काम कर रही हैं 2554446 और 2554447 और 2554448, और हमारा STD कोड है 01262।
0: और

0: हर्ष एक बार।
1: हेलो।
2: हेलो मैम, नमस्ते, राहुल बात कर रहा हूँ।
1: जी राहुल, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है।
2: मैम, एशियाई वो चैंपियनशिप वाला महिला वाला वो व्यक्तिगत पूछा था, वो तो सवाल दोबारा मत दूसरा कर दो आप, क्योंकि कोई श्रोता नहीं जुड़ रहा।
1: जी जी, चलिए कोई बात नहीं, हम हमारे साथियों को प्रश्न का जवाब बता देते हैं, वो जानना भी ज़रूरी है। सविता श्री भास्कर जो है इसका नाम है।
0: और आपके लिए जो अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि हाल फिलहाल दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान चलाया गया है, उसके तहत जो उनका शुभंकर है आपको उसका नाम बताना है, यानी कि आपको मैस्कोट का नाम बताना है। हेलो
2: हेलो,
0: हेलो,
2: मैं राहुल बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी राहुल जी, आपको प्रश्न जो है हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत शुरू किए गए शुभंकर का नाम बताना है।
2: क्या दोबारा बताना मैम?
0: दिल्ली सरकार ने जो है एक अभियान चलाया है कैच द रेन 2026, जिसमें वो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाएंगे, उसके तहत आपको उसके मैस्कॉट का नाम बताना है, यानी कि शुभंकर।
2: अलग अलग है मैम, एक आंकी की भी हुआ, उदय भी है, कौन सा पूछ रहे हैं?
0: जी नहीं, वो एक मैस्कॉट है, वो जो है वो उसको लेकर चलते हैं, बस आपको उसका नाम बताना है।
2: मतलब किससे संबंधित है मैम ये?
0: कैच द रेन 2026 अभियान के संबंधित है और ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत है।
2: प्रगति और विकास नहीं है क्या मैम?
0: जी नहीं।
2: ओके, नहीं आता।
0: हेलो
3: हेलो
0: हेलो,
3: नमस्कार मैडम, रामधारी बात कर रहा हूँ, गांव ढाणी से।
0: जी रामधारी जी, आपका स्वागत है। आपको बताना है कि हाल फिलहाल दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत शुरू किया गया है, उसमें शुभंकर का नाम आपको बताना है।
3: ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था।
0: जी
3: थैंक यू मैम, नहीं पता।
0: प्रयास जो है आप ऐसे ही करते रहें और हमसे जुड़े रहिए। आपको बता दें कि इसका सही जवाब नीरा है, और इसमें अगर देखें तो जो दिल्ली ने वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन 2026 अभियान शुरू किया है, नागरिकों में सतत जल प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान के शुभंकर नीरा का अनावरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य भूजल पूर्ण भरण में सुधार करना और वर्षा जल के संग्रहण को प्रोत्साहित करना है।
1: चलिए आज का कार्यक्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और साथियों आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जो भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। हेलो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो हेलो
4: हेलो,
0: हाँ जी
4: जी मैम, मैं संदीप बोल रहा हूँ।
0: जी संदीप जी, आपका स्वागत है।
1: प्रश्न सुना आपने,
4: ये जयप्रकाश क्या बोला आगे मैम?
1: जी, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो भारत का 100वां रामसर साइट है, यह किस राज्य में स्थित है?
4: जी मैम, ये यूपी में बलिया में।
1: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका।
0: और आपके लिए अगला प्रश्न है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023 और 2024, जो छठा हेल्थ सर्वे था, वो किस राज्य को छोड़कर जो है उसने ये सर्वे दिया है?
4: मतलब एक स्टेट ने भाग नहीं लिया।
0: जी, आपको उसका नाम बताना है।
4: वो तो फिर मैम सिक्किम।
0: जी सिक्किम इसका सही जवाब नहीं है,
1: आप एक प्रयास और कर सकते हैं।
4: तमिलनाडु।
0: तमिलनाडु भी इसका सही जवाब नहीं है। प्रयास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो
3: हेलो, नमस्कार मैम, रामधारी बात कर रहा हूँ।
0: जी रामधारी जी, आपका फिर से स्वागत है। आपको बताना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023 और 24 को जो उन्होंने जो सर्वे दिया है, उसमें एक राज्य छोड़ा गया, आपको उस राज्य का नाम बताना है।
3: एक राज्य छोड़ा गया?
0: जी,
3: वेस्ट बंगाल।
0: जी वेस्ट बंगाल इसका सही जवाब नहीं है,
3: धन्यवाद।
0: साथियों इसका जो सही जवाब है वो मणिपुर है, और इससे संबंधित आपको जानकारी दे तो जो ये सर्वे है वो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, और देखें तो जो ये सर्वे है वो पॉपुलेशन हेल्थ और भारत के न्यूट्रिशन की जो है वो सूचना देता है, और ये हमारा 2023 और 24 का जो है सबसे पहला सर्वे था हमारी कोरोना के बाद। और अगर देखें तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे मुंबई में हैं।
1: और साथियों, कार्यक्रम में आपके लिए अगला प्रश्न है कि 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको उस हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हर्ष मैम, गुड इवनिंग, राहुल बात कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है
1: जी? प्रश्न है कि 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है भारत में?
2: बेंगलोर, कर्नाटक?
1: जी नहीं।
2: कोई हिंट है मैम?
0: आपको बता दें कि जो ये राज्य है वो सबसे उत्तरी राज्य है,
1: और ये जी नहीं,
0: ये जो जगह आती है वो उत्तरी राज्य के अंतर्गत है।
2: उत्तराखंड?
1: जी नहीं।
2: बिहार?
1: बिहार भी नहीं है।
0: आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस राज्य में एक फ्लोटिंग थिएटर भी है।
1: हेलो,
5: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। प्रश्न है आपके लिए।
5: सतीश बोल रहा था मैडम, आसाम?
0: जी आसाम तो इसका सही जवाब नहीं है सतीश जी, आप एक बार
5: तो और। मैडम नई दिल्ली?
1: जी नहीं, नहीं,
0: दिल्ली भी नहीं है।
5: थैंक यू मैडम, अगले प्रश्न पे आता हूँ।
1: हमारे दो साथी जो हैं इस प्रश्न का सही जवाब नहीं बता पाए हैं। साथियों, आपको बता दें कि जम्मू वो राज्य है जिसमें भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान यानी कि रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया गया है।
0: और आप सभी के लिए अगला प्रश्न रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? हेलो हेलो
6: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
6: मैं गांव चंद्रावल से सूरज भान बोल रहा हूँ।
0: जी सूरज भान जी, आपका स्वागत है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन है?
6: ये थैंक यू मैडम, मैं तो पिछले प्रश्न के लिए ऐप पे सुन रहा था।
0: जी जी, आप जो है एक प्रयास कर सकते हैं।
6: संयुक्त राष्ट्र के 80वें अध्यक्ष?
0: जी,
6: फ्रांस के राष्ट्रपति?
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
6: थैंक यू मैम।
0: हेलो
7: हेलो
0: जी, नमस्कार
7: जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ।
0: जी संदीप जी, आपका फिर से स्वागत है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन है?
7: जी मैम, ये जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका ये।
1: और आपके लिए अगला प्रश्न है कि भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन है थे जिस टाइम बनाया गया था भारत का संविधान?
7: एके मेनन?
1: जी नहीं।
7: संवैधानिक सलाहकार तो मैम बी एन राव।
1: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका संदीप।
0: और आपके लिए अगला प्रश्न जो आपको बना देगा हमारे कार्यक्रम का पहला जीनियस, आपको बताना है कि पहला भारत का पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पर है?
7: कौन सा मैम?
0: भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर यानी कि जो मोतियों की खेती होती है उसका क्लस्टर कहाँ पर है?
7: मोतियों की खेती हम कर्नाटक में?
0: जी नहीं, ये कर्नाटक में नहीं है। आपको हिंट दे तो ये झारखंड में, आप बस उस जगह का नाम बता दें।
7: झारखंड में मोतिहारी?
0: जी नहीं, मोतिहारी भी इसका सही जवाब नहीं है।
7: ठीक है मैम, नहीं आता।
0: हेलो
2: हेलो
0: राहुल जी, आपका फिर से स्वागत है।
2: जी मैम,
0: आपको बताना है कि पहला भारत का पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पर है?
2: इसको थोड़ा व्याख्या करो थोड़ा।
0: जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर है यानी कि मोतियों की खेती का क्लस्टर, यह जो ये है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया गया है, ताकि जो फिशरीज़ की खेती होती है या फिर फिशरीज़ की प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो आपको उस
2: नई
0: जगह
2: दिल्ली,
0: एक बार फिर से दोहराएं
2: नई दिल्ली में
0: जी, नई दिल्ली तो इसका सही जवाब नहीं है।
1: और
0: हमने हमारे एक साथी को हिंट भी दिया था कि जो ये जगह है वो झारखंड में है,
2: रायपुर,
0: रायपुर भी इसका सही जवाब नहीं है।
2: झारखंड में रांची
1: जी नहीं,
2: जमशेदपुर
1: वो
0: जी
1: भी
0: नहीं,
1: नहीं
0: ये
1: है।
0: भी सही जवाब नहीं है।
1: चलिए कोई बात नहीं राहुल, हमारे दो साथी जो है इस प्रश्न के लिए हो चुके हैं याचना, और हमारे साथियों को सही जवाब अब बता दीजिए।
0: इसका सही जवाब है हजारीबाग, और जो ये क्लस्टर के लिए पहला पर्ल फार्मिंग था वो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2019 और 20 में, और ये इसकी फिर सूचना दी गई थी हमारे अगस्त 2024 में।
1: साथियों आपके लिए कार्यक्रम में अगला प्रश्न है कि टाइफून जांगमी ने जापान को प्रभावित किया, इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? हेलो हेलो,
8: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
8: रामधारी बात
1: जी, रामधारी, प्रश्न सुना आपने
8: मैम, झारखंड का क्या पूछा है?
0: वो पिछला प्रश्न था जिसका हमारा जवाब था हजारीबाग। आप जो प्रश्न था वो था कि पर्ल फार्मिंग क्लस्टर भारत का कहाँ पर था, लेकिन जो
1: अगला प्रश्न है रामधारी जी कार्यक्रम में कि टाइफून जांगमी जो है इस उष्णकटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण किस देश ने किया है, आपको उस देश का नाम बताना है। टाइफून जांगमी जो है ये इस उष्णकटिबंध जांगमी जांगमी
8: जी,
1: इसका नामकरण किस देश ने किया है, आपको उस देश का नाम बताना है।
8: इंडोनेशिया
1: जी नहीं,
8: इंडिया
1: जी नहीं, भारत ने भी नहीं किया है। हेलो हेलो
9: हेलो, नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग, मैं केशव चक्रवर्ती त्रिपुरा अगरतला से
1: जी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, और आपको प्रश्न का जवाब बताना है कि टाइफून जांगमी का जो है किस देश ने नामकरण किया है?
9: ओ ये तो चीन है, खूब सम मैंने प्रोबेबली चीन, चाइना
1: जी नहीं, चाइना ने नहीं किया है
9: टाइफून, ये तो
1: टाइफून जांगमी
9: टाइफून ये दैट इज स्टॉर्म तो टेम्पेस्ट
0: जी नहीं।
9: जी
0: हमने जो आपसे प्रश्न पूछा है आप सिर्फ उसका जवाब दीजिए कि टाइफून जांगमी का जो नाम है वो किस देश ने दिया है।
9: ओ ये तो थाईलैंड
1: जी, जी नहीं, थाईलैंड भी नहीं है। आप एक प्रयास और कर सकते हैं,
9: ताइवान
1: जी नहीं, ताइवान भी नहीं है। हमारे साथियों ने बेहद ही अच्छे प्रयास किए लेकिन सही जवाब तक हम नहीं पहुंच पाए, और आप सभी को बता दें कि टाइफून जांगमी का नाम साउथ कोरिया ने रखा था।
0: और आप सभी के लिए अगला प्रश्न कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान रहा है? हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम, राहुल
0: जी, राहुल जी आपका फिर से स्वागत है। आपको बताना है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान रहा है?
2: भारत का
0: स्टार्टअप इकोसिस्टम में
2: 21वां
0: जी नहीं, 21वां तो नहीं है। जो ये अभी इकोसिस्टम बना है हमारे भारत का वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है हाल फिलहाल में, आपको बस विश्व में उसका स्थान बताना है।
2: ठीक है, नहीं आता।
0: हेलो
10: हेलो मैम, संदीप बोल रहा हूँ मैं
0: जी। संदीप जी आपका फिर से स्वागत है, आपके लिए प्रश्न है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान रहा है?
10: जी मैम, 15वां स्थान रहा है।
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है,
10: तीसरा रहा है।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। और आपके लिए एक और प्रश्न पूछ देते हैं कि सिनबेक्स 2026 किन दो देशों के बीच हुई है?
10: क्या हुई मैम?
0: सिनबेक्स 2026 जो ये एक दो देशों के बीच जो है एक प्रैक्टिस हुई है, युद्ध प्रैक्टिस, वो किन दो देशों के बीच हुई है?
10: ये मैम भारत और थाईलैंड के बीच।
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है, भारत तो ठीक है लेकिन दूसरा देश सही नहीं है।
1: चलिए कोई बात नहीं आज।
0: और साथियों इसको बता दें कि हमारा जो देश है वो दूसरा वो कंबोडिया है, और इसके बाद जो है समय

अभी आप सुन रहे थे दैनिक आयोजन युवा संसार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में

0: प्रतिशत अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा। पहले जानते हैं आज के शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण उनके समय अनुसार। आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर सेवा प्रभाव द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में विदेश नीति पर बातचीत। वार्ताकार होंगे विदेश मामलों के विशेषज्ञ। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इन दोनों कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साप्ताहिक समीक्षा, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:45 पर और सुगम संगीत हम आपके लिए पेश करेंगे रात्रि 8:25 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा एक फिल्म से। रात्रि 10:00 सुनिएगा शास्त्रीय संगीत, गायिका होंगी दीपा शर्मा याग यमन। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत होगा रात्रि 10:30 पर। शाम 6:20 पर कार्यक्रम होगा कृषि जगत, विश्व रहेगा मित्र कीटों की पहचान। और शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, विषय रहेगा ऊर्जा की बचत। साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल, फोन इन कार्यक्रम। अब कल के आकर्षण। कल सुबह 6:05 पर कार्यक्रम होगा वंदना। सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। कल प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम होगा विविधा। आप सुनेंगे विज्ञान वार्ता, मरुभूमि व सूखे से निपटने के उपाय। वार्ताकार होंगे नवीन कटारिया। प्रातः 7:25 पर कार्यक्रम होगा सुबह सवेरे। और कल आप सुनेंगे फिल्म संगीत, समय होगा सुबह 9:00। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार होंगे जगबीर सिंह बलम्बिया। और सुबह 6:50 पर कार्यक्रम होगा कृषि की बातें। कल दूसरी सभा में दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। और कल दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। और कल दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान, विषय रहेगा कृषि वानिकी।

0: कल शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम सुरक्षा चक्र, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर, और कल शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब से चंद लम्हों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई, हरियाणा को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की। अन्य दुकानदारों को भी राहत राशि मिलेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा, वैश्विक स्थिति के चलते भारत में अन्य देशों के मुकाबले ईंधन और दवाओं आदि के दामों में कम वृद्धि हुई है। और हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। यह देश के विमानन क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ये हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों का संचालन करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जेवर हवाई अड्डे से फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपये, पूर्ण रूप से बर्बाद दुकानों के मालिकों को 5-5 लाख रुपये, अन्य दुकानदारों को 2-2 लाख रुपये और जली रेहड़ी के मालिकों को 50,000 रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज अग्निकांड में तबाह हुई दुकानों का निरीक्षण करने के उपरांत प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा,
6: मैंने उसी दिन जिस दिन ये आगजनी हुई थी कहा था कि जिनकी आगजनी के अंदर मृत्यु हुई है उन परिवारों को 10-10 लाख रुपया हम देंगे। इसमें अमन कुमार, सनौफ श्री जगदीश और रोहित खुराना है और कपिल कुमार है। जो नुकसान यहाँ हुआ है, सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जान की भरपाई नहीं हो सकती। थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। और इसके बाद जो ULB विभाग है वो भी इसका आंकलन कर रहा है, और उस आंकलन के बाद और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम सरकार करेगी।
5: शहरी स्थानीय निकाय के रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अग्निकांड में मारे गए कपिल, सौरभ व अमन के घर भी गए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा, क्योंकि भारत का 25-30% पेट्रोलियम हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते ही आता है। और युद्ध की वजह से पोतों की आवाजाही प्रभावित थी। श्री विज आज अम्बाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू होने के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि SIR चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है।
3: देखिए SIR चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, पिछले कई साल से हुआ नहीं था। जो लोग बदल के चले गए, जिनकी 2002 के बाद मृत्यु हो गई, उनके नाम नहीं कटे, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया जाता है कि गलतियां मलतियां करके अपने नाम इसमें जुड़वा ली, जबकि वो मतदाता है नहीं। चुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है, हम तो स्वागत करते हैं और हर नागरिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। BLO हालांकि जाएंगे घर घर, लेकिन ठीक ठीक जानकारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि ठीक।
5: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध की स्थिति, ईंधन और दवाओं के दाम में बढ़ोतरी का सामान भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। भारत में विकसित देशों के मुकाबले दाम में काफी कम वृद्धि हुई है। वे आज कैथल में भाजपा के जिला स्तरीय सम्मान समारोह में मीडिया से बातचीत कर रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि सुरजेवाला मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल बातें करते हैं और महंगाई पर कोरे बयान देते हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए कार्यकर्ताओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के विरोध पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रहा है।
7: आज हम वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं और जितने हमारे घुसपैठ ये दूसरे देशों से, स्पेशली बांग्लादेश से आके भारत के लोगों के जो अधिकारों के ऊपर डाका डाल रहे हैं, अगर उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का काम कर रहे हैं तो विपक्षियों को क्यों तकलीफ हो रही है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखो तो किस तरीके से लाखों लोग वहाँ पर बंगाल से आकर हमारे जो पश्चिम बंगाल के भारतीय हैं उनके अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं।
5: इससे पहले भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पानीपत प्रभारी अशोक गुर्जर, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज जींद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पहले खेल मंत्री ने जिला ग्रामीण विकास कार्यालय के प्रांगण में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री गौरव गौतम ने बताया कि आज की बैठक में कुल 11 मामले रखे गए, जिनमें से 9 मामलों का मौके पर ही स्थायी समाधान कर दिया गया। शेष 2 मामलों को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखा गया है और संबंधित उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के एक पुस्तकालय का नाम बदलकर अटल पुस्तकालय किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा,
8: दोनों हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। महापुरुषों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, महापुरुष देश की धरोहर होते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को महापुरुषों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
5: केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के सहयोग से हिसार जिले के गाँव मुकलान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पुष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगाए गए इस राष्ट्रीय शिविर की समाप्ति पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य किया। शिविर के संयोजक नरेंद्र दुहन ने बताया कि शिविर में विभिन्न राज्यों से 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
9: इस शिविर में 7 राज्यों से 200 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मध्य प्रदेश से 9 बच्चे और छत्तीसगढ़ से 9 बच्चे, उत्तराखंड से 9 बच्चे, पंजाब से 9 बच्चे, हिमाचल प्रदेश से 9 बच्चे और 100 बच्चे हरियाणा के थे और 100 बच्चे अलग अलग राज्यों से थे। सभी बच्चों ने गांव में जाकर के महिलाओं से बात की, हमारे कल्चर को जाना, हमारे पशुओं को देखा, लोगों से मिले, बातचीत की, हमारे जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर चर्चा की। इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था, बच्चों का व्यक्तित्व विकास और अनेकता में एकता।
5: शिविर में भाग लेने पहुंची छात्राओं ने कहा कि उन्हें अलग अलग राज्यों की संस्कृति, बोली, भाषा, खानपान व पहनावे आदि के बारे में जानने व समझने का अवसर मिला।
10: मेरा नाम जानवी और मैं मोगा पंजाब से आई हूँ। यहाँ NIC ने हमें एक मौका दिया और मिलजुल के काम करने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी जैसे स्टेट से हम मिले और हमें कल्चर, खानपान और ये सब जानने को मिला।
5: हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर आज यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिसार हवाई अड्डे के निदेशक OP सैनी ने बताया,
11: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर विभिन्न गतिविधियां की जा रही है।

0: सबसे पहले हमने इसमें वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया, उसके पश्चात हमने इस एयरपोर्ट पे काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ को हमने सम्मानित किया, उसके पश्चात हमने हिसार एयरपोर्ट पे कार्यरत जितने भी वुमेन्स है, महिला जो हमारी कर्मचारी है जो एविएशन सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान किया। हमने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया।
1: श्री सैनी ने कहा कि आज हवाई अड्डे पर यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें स्वागती किट भी प्रदान की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई, हरियाणा को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की। अन्य दुकानदारों को भी राहत राशि मिलेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा, वैश्विक स्थिति के चलते भारत में अन्य देशों के मुकाबले ईंधन और दवाओं आदि के दामों में कम वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

ये एक मंत्र से है बाजी गरने है ऐसी माला फेर दई मकबरे कोखे बनावन शक्ति सबके अंदर ढेर दई तीन लोक और 14 भवन में अप

ते पाकी कली गद देखे कोई कोई दखता है लखाम है रे कोई कोई दखता लखाम है।

बाजे गर धोर एक बकरी जो भूखे रोज में माती है, चारे हरे वोर सूखे खरे फल फूल बेल के खाती है। जितने दुकानदार मेले में सब पे टैक्स लगाती है, फिर कर कर

संकट काओ आ सह धर्म साथी आ धर्म राज घर जाना हो दे थूक फूकियो आ कला पाप काज आ जगत के याद नसाना हो आ उस बकरी ने है कोई ना छोड़ा गुरु याना हो चाहे शाना हो दखे सभी देवता आ परसन हो जाजे।

0: फॉरेन ट्रिप लिंक पे क्लिक करो, हमने कर दा।
1: दादू रुको, लिंक पे क्लिक ना करना।
0: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तब तुम्हारे बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
0: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। हाँ आले, तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, तू बोल रहे हो।
3: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੇਸ਼ੇ ਹਰਿਆਣਾ
2: ਸਮਾਰਟ ਬਣੋ ਕੂਲ ਰਹੋ
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੇਸ਼ੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ
4: प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचक चंदन शर्मा। बीते 12 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले किए हैं। केंद्र सरकार के फैसलों से कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी लाभान्वित हुआ है। राजग द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सबसे पहली रैली 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हुई थी। पिछले 12 साल के दौरान प्रधानमंत्री 17 बार हरियाणा आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र और किसानों के समग्र विकास के लिए कई अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, आधुनिक तकनीक का प्रसार करना और प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा प्रदान करना रहा है। सरकार का मानना है कि किसान भाई बहन देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधार स्तंभ हैं। उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। PM किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल उनकी आय की सुरक्षा के साथ साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई पहल की है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का शुभारंभ है, जो देश की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिलते हैं। अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। किसानों की आय को कई स्रोतों से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई। 2014-15 से लेकर इस साल मार्च तक लगभग 26 करोड़ मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। फसल बीमा योजना के तहत लगभग 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों में मदद मिली है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपए की मासिक सुनिश्चित पेंशन दी जा रही है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसानों के लिए जीवन रेखा बन गया है, क्योंकि सरकार ने इसे उत्पादन लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित किया है। सरकार के नीतिगत समर्थन के कारण कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 26 करोड़ 50 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 35 करोड़ 80 लाख टन हो गया है। भारत 15 करोड़ 40 लाख टन से अधिक के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। PM कुसुम योजना से जहाँ खेती के लिए उन्हें सौर ऊर्जा सुलभ हुई है, वहीं इससे खेती पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। खेती सहित अन्य जरूरतों के लिए कम ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के बहुत काम आ रहा है। उनकी फसलों को उचित मूल्य दिलाने के लिए बीज से बाजार तक

0: पहल भी बहुत कारगर साबित हो रही है। 2014 से 2025 के बीच जलवायु के अनुकूल फसलों की लगभग 3000 किस्में जारी की गई हैं। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 84,200 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए, जिससे 1.33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। हरियाणा ने शुरू से केंद्र सरकार की योजनाओं के कदम ताल करते हुए देश के अन्य राज्यों के सामने एक नज़ीर पेश की है। केंद्र की किसी भी योजना को लागू करने में हरियाणा ने हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने के बाद हरियाणा में अब तक 1,17,00,000 किसानों ने इसका लाभ उठाया है, जिन्हें 9,099 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी सहायता प्राप्त हुई है। खरीफ सीजन 2025 में 1,67,460 किसानों को 711 करोड़ रुपए का फसल नुकसान मुआवजा दिया गया। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने और उसके अनुसार सही उर्वरकों का प्रयोग करने को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। इस पहल के तहत राज्य में अब तक 70,00,000 मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं। 55,00,000 नमूनों का विश्लेषण कर किसानों को मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 86,00,000 से अधिक मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा में 17 स्थायी मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। हरियाणा सरकार ने पीएम कुसुम योजना को भी प्रमुखता से लागू किया है। 1,80,582 किसानों को इसका लाभ मिला है। इस योजना का लाभ देने में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा चौथे नंबर पर है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इस मामले में हरियाणा से पीछे है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना 5,54,405 किसानों को 461,75,00,000 की राशि जारी की गई है। 9,885 किसानों को 85,10,00,000 की मशीन खरीद पर सब्सिडी दी गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत प्रदेश के 11,71,00,000 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, जो MSP फसल खरीद फसल बीमा योजना तथा अन्य कृषि योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा में अब तक केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में 16,00,000 से अधिक किसान आ चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत हरियाणा के करीब 4,00,000 किसानों का पंजीकरण हुआ है। ये योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ किसानों को 24 फसलों पर MSP मिलता है। हरियाणा सरकार ने मंडी भाव नहीं मिलने पर किसानों की चिंता को दूर करते हुए 14 सब्जियों 5 फलों तथा 2 मसालों समेत 21 उत्पादों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है, जिससे किसानों को जोखिम की पूर्ति की जाती है। हरियाणा समेत समूचे देश में एक दौर वो भी था जब किसानों को मिलने वाला मुआवजा राशि के 2 या 3 रुपए के चेक भी वायरल हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और डिजिटल सुविधाओं ने किसान को ग्रामीण उद्यमी के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: कृषि जगत कार्यक्रम में भाइयों का फिर से स्वागत है, और भाइयों इब एक बातचीत सुनेंगे अरंड की कास्त के बारे में। तो भाई सुने ये बातचीत।
2: अरंड की कास्त आज इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आत्मन पुनिया जी को। आप सहायक वैज्ञानिक हैं, बावल में आप कार्यरत हैं, जहां पर आप रिसर्च का अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब अरंड वैसे तो अगर पुराने समय में देखें तो जंगलों में या खेत खलिहानों के आसपास में कहीं इस तरह से उगा हुआ देखा जाता था
3: जी,
2: लेकिन इसकी जो व्यावसायिक कास्त है ये कब से शुरू हुई, और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं।
3: जैसे सर आपने बता ही दिया कि सर ये जैसे बचपन में हमने भी देखे हैं सर, उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये पौधा है क्या
2: जी।
3: या आपने भी देखे हैं तो कई बुजुर्ग हैं वो कहानियां सुनाते हैं कि हम अंडोलियों को बेच के और कुछ भी मिल जाता था परचून की दुकान पे, किराने की दुकान पे, तो वो टॉफी वगैरह लाइक खाते थे सर वो। लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे इसकी ऊपर शोध का कार्य हो रहा है तो हमें पता लग रहा है सर इसके अंदर आप देखेंगे जो इसका तेल है वो वैसे खाने योग्य नहीं है, लेकिन हमारी जो औद्योगिक जितनी भी दवाइयां हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, या आप ये कहेंगे कि जहां ग्रीसिंग एजेंट चाहिए होते हैं, वहां इसको मतलब बड़े पैमाने पे इस पे शोध का कार्य हो रहा है। इवन जो आप देखेंगे जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके अंदर एज ए बायोवार का एजेंट भी यूज हुआ है
2: जी।
3: तो उसी के साथ सर इसके अंदर ये एक ऐसा पौधा है जो किसी भी रफ टफ मतलब आप
2: कैसी जमीन
3: किसी
2: हो,
3: भी जमीन हो जहाँ पानी हो, पानी कम है ज्यादा है, सब में उग जाएगी और आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी जहाँ दूसरी फसलें नहीं उग रही हैं
2: जी। तो डॉक्टर साहब इसका जिस तरह आपने बताया कि बहुत लंबा चौड़ा इसका काम है और शोध के कारण ये पता चला है कि बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर साहब एक बात आती है कि चलो हम उगा भी लेते हैं इसको, उगाने के बाद में फिर इसका बिक्री का एक सबसे बड़ा इश्यू होता है, भाई अगर हमने लगा लिया तो उसके बाद कहाँ बेचेंगे इसको।
3: सर आपने बिल्कुल एक वो कहते हैं ना सर कि हम जो काम कर रहे हैं और हमारी दुख तिरक पे जो हाथ रखना है वो हमारे साथ भी है सर, और ये बिल्कुल आपने बड़ा मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत या समस्या है इसमें यही है मार्केटिंग की। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं सर, इस साल हमने जो ट्रेंड फॉलो किया है, इवन सिरसा साइड जो गंगानगर से एरिया है, फतेहाबाद है हमारा, इसार से इसार का भी काफ़ी एरिया है, नोरबादरा साइड भी, तो आप देखेंगे नोरबादरा में तो बड़ी अच्छी मंडी है ही है अरंड की, उसी के साथ अब की बार एलनाबाद सिरसा में इसके रोज रोज के प्राय में जो रेट आए हैं, भाव आए हैं मंडियों के, वो रोज आए हैं अरंड के, तो हमारा इस एरिया में अभी दिक्कत नहीं है जो सिरसा फतेहाबाद इसार का एरिया है। और उधर जैसे हम रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं सर, जैसे रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये इस इलाके में भी हमारी जो मंडी है, रेवाड़ी के किसान है महेंद्रगढ़ के, वो दिल्ली के पास में अपनी फसल है, मोदीनगर है, वहाँ बेच के आते हैं। इसी के साथ अगर और अच्छे मतलब हमारी क्या है कि हमारी जो अरंड है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की, उसकी गुणवत्ता बड़ी अच्छी होती है, उसको बड़ी साफ सुथरी निकलती है, तो वो अगर गुजरात भी लेके जाते हैं उसका भी हमें हमारे यहाँ से भाव अच्छा मिलता है
2: जी।
3: तो आज के समय में मंडी की जो समस्या आपने कहा है वो काफी हद तक अच्छी मतलब हम एक पॉजिटिव की ओर हैं अगर सर हैं कि हमारे पास मंडियां अभी काम कर रही है सुचारू रूप से,
2: यानी कि दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ी बहुत आपको मंडी के भाव हैं वो पता करने पड़ेंगे, बाकी इसकी बिक्री हो जाएगी
3: जी बिल्कुल। और उसी के साथ ये भी है सर कि जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, उसके हिसाब से इसकी औद्योगिक जो क्षमता है वो हमारे लोकल एरिया में भी हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ भी इंडस्ट्री लग सकती है, उद्योग लग सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी कुछ एक इसकी सुविधा हो जाएगी, हम लोकली जो मार्केट है उनमें भी बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे।
2: यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसान भाई इसको अधिक मात्रा में उगाते हैं तो उसके उत्पादन को देखते हुए कोई ना कोई उद्योग है वो भी शुरू किया जा सकता
3: जी
2: है।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूँगे कि इसको अकेले लगाया जाए या किसी के बीच में हमने कोई फलदार वृक्ष लगा रखा है या अपने वन के हिसाब से हमने पौधे लगा रखे हैं तो उसके बीच में लगाया जाए, कौन सा तरीका इसमें सही रहेगा?
3: सर ये फ्रूट जो आप फलदार पौधे कह रहे हो या वन कह रहे हो उनके साथ तो हम इसकी सिफारिशें नहीं करते कि आप उनके साथ लगाओ
2: जी।
3: लेकिन जो आप कह रहे हो इंटरक्रॉपिंग या अंतर जो फसल है उनके साथ में सर, जैसे अलग अलग फसलें हैं हमारे, बल्कि जो किसान भाई हैं वो कर भी रहे हैं, पर्टिकुलरली रेवाड़ी के अंदर लोधाणा जड़थड़ गांव है, वो क्या करते हैं पहले मूंगफली उगा देते हैं जून की मतलब शुरुआत में 15 से 20 तक वो मूंगफली बो देते हैं, उसके बाद वो अगस्त में मतलब 15-20 दिन इसको बाद में बोते हैं। इसकी वैसे तो हम जुलाई में सिफारिश देते हैं कि 15 जुलाई तक आप इसको उगा दो बो दो, लेकिन वो क्या करते हैं 10 से 15 दिन बाद में तो अरंड को लगाते हैं और वही 10-5 दिन पहले मूंगफली को लगाते हैं, तो सितंबर तक जब ये अरंड के अंदर फूल आने शुरू होते हैं उस टाइम तक मूंगफली के जो फल हो जाते हैं जिसको हम अंदर जमीन के अंदर लगते हैं तो वो बन के मूंगफली है वो तैयार हो जाती है, तो ये एक दोनों के अंदर कोई
2: कंपटीशन
3: नहीं होती, प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो ये अच्छा है। उसी के साथ जो हरी सब्जियां हैं, मूली हो गया, गाजर होगी, धनिया हो गया, पालक होगी, ये बिल्कुल अच्छे से ले रहे हैं। अगर आप फसलों में बात करो मूंग और ग्वार, बड़ी बहुत अच्छी चलती हैं। अगर आप इसकी दूरी लोगे लाइन से लाइन 150 सेंटीमीटर तो या 5 फीट, उसमें आप 2-3 लाइन मूंग की या ग्वार की ले सकते हो।
2: जी, अब डॉक्टर साहब बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बढ़िया किस्म है जो कि अच्छा उत्पादन देते हैं।
3: हमारी जो हरियाणा के लिए है सर, उसमें सबसे अच्छी किस्म है ICH5, जो हमारा ICH5 जी, वो हमारा जो निदेशालय है, इसका तिलन निदेशालय है हैदराबाद की, वो उनके द्वारा डेवलप की गई है। उसमें हमारे यहाँ खुद के बावल में भी उसको हमने टेस्ट किया है, उस पर रिसर्च हुआ है सारा, हमने भी उस पर कार्य किया है, तो वो निकल के आई है हमारे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी किस्म वही है ICH5, जो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले तक भी पक जाती है। और विपरीत परिस्थितियों में इसमें क्या होता है, सबसे मतलब ये ऐसी फसल है कि इसके अंदर जो हमारी जो मादा फूल है वो नर में बदल जाता है जब इसका 30 से 32 डिग्री तापमान होता है।
2: अच्छा।
3: और आर्द्रता है वो 95% से ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें भी हमारी जो ICH5 है वो काफ़ी अच्छी है और जल्दी भी पकती है ये, और इसका पैदावार भी काफ़ी मतलब अच्छी है।
2: कितना
3: इसकी है? पैदावार सर 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक है, और किसान हैं वो 20-20 क्विंटल भी ले रहे हैं एक एक एकड़ में।
2: जी, तो इसमें बीज कितना लेना पड़ेगा?
3: बीज इसमें सर दो चीज़ें हैं, एक तो हमने जैसे बात की कि कहीं भी लगा लो, तो इसमें एक तो कम सिंचाई हमारे पास साधन नहीं है तो कमी है, तो वहाँ हम 2 किलो बीज लेते हैं, और उसमें जो लाइन से लाइन की दूरी है और पौधे से पौधे की दूरी है वो लेते हैं हम 90 सेंटीमीटर,
2: यानी लगभग 3 फुट।
3: हाँ जी, लगभग 3 फीट होगी, और उसमें 2 किलो सीड लगेगा। लेकिन जहाँ हमारे पास पानी की थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं और अच्छी मतलब पूर्ण सिंचित कंडीशन है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको पौधे से पौधे की लंबाई दूरी है वो तो हम 90 सेंटीमीटर रखेंगे, लेकिन जो हमारी लाइन से लाइन है उसकी 120 सेंटीमीटर या 4 फीट हो जाती है, उसमें लगाएंगे तो हमारा जो बीज की मात्रा है वो 1.6 kg, 1.6 किलो बीज लेंगे हम प्रति एकड़ के हिसाब से।
2: जी, यानी इसमें खुड़ तो खुड़ का फासला है।
3: हाँ जी,
2: वो बढ़ जाएगा,
3: वो बढ़ जाएगा जो पूर्ण सिंचित है। और अगर आप इसी के साथ जो आपने बात की अंत फसलों वाला या इंटरक्रॉपिंग का, अगर वो लेते हो तो 5 फीट का हम फासला कर देंगे, और बीच में 2 से 3 लाइन मूंग या जो फसलें हैं, पालक हो गया, मूली हो गया, गाजर होगी या फिर मूंगफली होगी, ये आप ले सकते हो, हरी सब्जियां जो भी, धनिया कुछ भी आप इसके अंदर मेहनत करोगे तो ये फसल आपको नीचे नहीं गिरने देगी।
2: जी, बस अब कितने एक दिन में तैयार हो जाएगी
3: ये? अभी सर हमारे पास जो मैंने बताया ICH5 है, हम इसको जुलाई में लगाएंगे, ये अप्रैल की आखिर तक कट के तैयार हो जाती है, तो आप ये मानो 8 से 9 महीने में ये फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब ये देखते हैं कि भाई 8 से 9 महीने में तो क्या है कि 2 सीजन कवर कर रही हैं 2 फसलों को, लेकिन ये क्या है, अगर आप इसकी इकोनॉमिक्स निकालोगे, इसकी अगर कंपेयर करोगे कि भाई एक फसल में इतनी, हाँ जी, आर्थिक विश्लेषण करोगे, एक फसल में हमें इतना रुपया मिल रहा है, 2 में इतने मिल रहे हैं, तो भी ये उन 2 फसलों के साथ में अपनी प्रतिस्पर्धा रखती है और आपको अच्छा मुनाफा देने का मतलब है इसमें दम।
2: जी, इसके अलावा भी कोई और वैरायटी है, किस्म है?
3: हाँ बिल्कुल है सर, एक ICH66 है गुजरात की, GCH7 है, GCH8 है, जो हमारे इलाके में अभी भी चल रही हैं और बड़ा अच्छा उत्पादन दे रही हैं, जैसे सिरसा, गंगानगर या आप ये जो बादरा साइड है हमारा, जो आदमपुर का हो गया, फतेहाबाद हो क्या होगा, तो यहाँ गुजरात की जो किस्म है GCH87 और ये चल रही है हमारे पास, 7 और 8 जो है काफ़ी अच्छी चल रही है हमारे एरिया में।
2: जी, उत्पादन या कोई कीड़ा बीमारी इसमें?
3: इसमें हमारे एरिया में हम बड़े एक यूं लगा लो सर कि प्रकृति ने हम पे दया दिखाई हुई है कि इस फसल में हमारे ऊपर कोई कीड़ा आता नहीं है। शुरुआत में इसमें आता है जो फल बनता है उसमें एक छेदक होता है जिसको हम या तो इंग्लिश में कैप्सूल बोरर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलें तो उसको फल छेदक बोलते हैं। वो कीड़ा पक्का आता है सर, क्योंकि हमारे आजकल अगर आप देखोगे मानसून में तो कंटिन्यूसली बारिश रहती है, तो एक नमी सी रहती है, उसकी वजह से आता है। जब पहला गुच्छा बनेगा उसके अंदर वो कीड़ा आता है, लेकिन हम उसको एक कहते हैं ना कि सावधानी बरत के एक स्प्रे आप कर दोगे तो वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। और वो किस चीज़ का करना है, वो है मोनोक्रोटोफोस। आपको क्या करना है जी, आप सिर्फ एक ml 2 लीटर पानी में डाल दो, अगर किले का है तो 125 ml आप दवाई को 250 लीटर पानी में डालो और ये कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी।
2: इसके अलावा कोई और किस्म?
3: किस्म का तो देखो सर, हम अभी खुद कार्य कर रहे हैं जैसे हमारे स्टेशन पे, तो

0: हम भी उम्मीद है कि सर हमारी खुद की किस्में आ जाएंगी।
1: अच्छा
0: हमारा काफ़ी अनुसंधान चल रहा है,
1: जी
0: लेकिन वही है कि ये फसल एक ऐसी चमत्कारी है कि इसको समझने में ना हर साल हमारा तापमान बारिश कम ज़्यादा हो जाती
1: जी
0: है, तो ये उसी के साथ में अपना रूप बदल
1: बदल
0: लेती है, तो
1: जी
0: वो हमारे लिए भी एक चैलेंज है,
1: जी
0: लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं सर हमारी खुद की किस्में आ जाएंगी।
1: बहुत बढ़िया। तो इसमें बिजाई का तरीका क्या रहेगा?
0: इसमें बिजाई का यही है सर कि आप जैसे में आपकी जो दूरी है
1: जी
0: पहले कपास में भी, तो वही हम इसका निशान है वो गांठ सियों के बना लेते हैं, और उससे सीधा मतलब तरह से निशान जो चौराहा मतलब एक चो
1: आपस में मिल
0: ने वहाँ आप बीज रख दो,
1: जी
0: और थोड़ा सा खुरपी से आप मिट्टी हटाओ और वहाँ रख दो बीज। तो इस तरीके से हाथ से इसकी
1: कितनी गहराई हो, कभी ऐसा ना
0: इसकी
1: हो ज़्यादा गहरा हो जाए जाम ना सके।
0: नहीं, एक्चुअली ये बड़ा बड़ा ये भी एक मतलब इसमें सर है ही कि आप इसको वैसे तो दिक्कत आती नहीं है,
1: जी
0: लेकिन अच्छी बात ये है कि सर हम जैसे रखते हैं तो इसको आप 3 से 4 5 सेंटीमीटर तक भी अंदर बोएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी
0: इसके अलावा सर एक और मैं बताना चाह रहा हूँ, इस फसल में सिर्फ एक ही समस्या है जब आप बिजाई करते हो, उसमें क्या है कि अगर पानी खड़ा होता है
1: जी
0: तो इसके अंदर दिक्कत आ सकती है, कि पानी अगर हमारे आजकल क्या है बारिश कंटिन्यूसली चल रही है तो पानी खड़ा हो जाता है,
1: जी
0: तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है वो जड़ गलन की, पौधे गलने की। अदरवाइज अगर जैसे हम इसको प्रेफर वहीं करते हैं कि जहाँ दोमट मिट्टी हो,
1: जी
0: बलुई मिट्टी हो,
1: जी
0: बलुई दोमट जो इसके लिए सबसे अच्छी है, तो वहाँ पानी भी नहीं रुकता, वहाँ बड़ी अच्छी चलती है ये, या
1: जी
0: बरानी एरिया में तो दिक्कत नहीं आती
1: जी
0: सर।
1: डॉक्टर साहब, अगर थोड़ी सी उठी हुई क्यारी बढ़ावें या डोर थोड़ी सी ऊंची करें तो उसमें कुछ फर्क रहेगा?
0: बिल्कुल रहेगा सर, बहुत मतलब अगर हम करते हैं जैसे हम किसानों को भी यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा ना जो खुड़ से खुड़ की दूरी है उसको आप बेड को थोड़ा सा
1: ऊंचा उठा के
0: ऊंचाई पे रखो,
1: जी
0: और उस पे अगर बोओगे तो क्या है वो पानी नीचे रह जाएगा और उसमें दिक्कत नहीं आएगी,
1: जी
0: और अगर बलुई या दोमट मिट्टी है ना तो उसमें तो वैसे भी दिक्कत नहीं आती सर।
1: जी अच्छा, इसमें खाद वगैरह का भी कुछ ध्यान
0: जी
1: रखना
0: खाद का
1: पड़ेगा?
0: सर इसमें क्या है कि हम खाद जो दो बताया, जैसे एक तो कम सिंचित एक पूर्ण सिंचित,
1: जी
0: तो कम सिंचित है उसमें 32 किलो हम यूरिया डालते हैं,
1: जी
0: और उसी के साथ में सर हम पूर्ण सिंचित में 48 किलो
1: जी
0: यूरिया डाल देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब जैसे देखते हैं हम 24 किलो हम फॉस्फोरस और 12 केजी पोटास डालते हैं, और उसमें भी 24 केजी मतलब दोनों में पूर्ण में और कम सिंचित में 24 12 पोटास रहेगा। अब इसको डालना कैसे कैसे है,
1: जी
0: 16 केजी तो हम यूरिया डालेंगे सर जिस टाइम बो रहे हैं, दोनों में पूर्ण में भी और सिंचित जो पूर्ण सिंचित होगी और कम सिंचित उनमें।
1: जी
0: उसके बाद में हम ये करते हैं जैसे हमारी जो पूर्ण सिंचित है उसमें हम कम से कम 5 से 6 कटाई लेते हैं, तो 8 किलो यूरिया हर सिंचाई के बाद हर कटाई के बाद जो
1: जी
0: गुच्छा हम काट लेंगे पहला उसके बाद पानी दे दो, और उसके बाद 8 किलो यूरिया आप छिड़क दो 1 एकड़ में।
1: जी
0: तो
1: डॉक्टर साहब, शुरुआत में जो हमने खाद देनी है उसका क्या तरीका रहेगा? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि इसका डोल के ऊपर ये चोब के फिर लगाने हैं, तो
0: देखो जी, आप जैसे कह रहे हो हम जैसे किसान भी करता है या हम भी करते हैं, हम पहले खेत तैयार करते हैं
1: जी
0: तो जो ड्रिल मशीन है
1: जी
0: उसी में डाल के मिक्स करके हम बो देते हैं,
1: जी
0: उसके बाद हम अपना सुहागा मार देते हैं प्लेन करके, फिर आप उसमें बोलो या खेत से जो क्यारी सी बनाते हैं ऊपर
1: जी
0: उठा हुआ
1: जी
0: उसमें, तो हम ड्रिल से ही इसको बोते हैं जनरली।
1: जी तो इसमें फिर पानी की क्या व्यवस्था रहेगी अगर पानी नहीं लगता? वैसे तो आपने बताया जुलाई का इसका
0: जी
1: मौसम है तो उस समय तो बारिश आ जाएंगी,
0: जी
1: लेकिन अगर नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए पानी का हिसाब किताब?
0: देखो सर अगर पानी का एक तो दो है हमारे पास कि बारानी और जिसमें हमारे पास सुविधा है पानी की,
1: जी
0: तो जो बारानी एरिया है हम उसमें कई बार क्या होता है कि भाई मॉनसून ऊपर नीचे हो जाता है, तो बारानी में तो यही है कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो हम सीधा ही सीधा मॉनसून पे निर्भर कर रहे हैं सर,
1: जी
0: तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेट आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरी क्या है, एक दो पानी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम ये सिफारिश करते हैं 40 से 45 दिन पे एक लगा दो,
1: जी
0: 80 से 85 पे दूसरा पानी लगा दो। तो इस क्रॉप में एक ये है कि भाई अगर इसमें कुछ पानी की क्वालिटी अच्छी भी नहीं है तो
1: जी
0: भी ये सर्वाइव करेगी, ये सहन शक्ति है इसकी।
1: जी
0: पूर्ण सिंचित में ये है सर कि हमारा वैसे तो हम मानसून का जो देख रहे हैं 3 से 4 तक सितंबर 3 4 साल से जो देख रहे हैं एक
1: जी
0: कि सितंबर

0: तक बारिश हो ही रही है, जुलाई से शुरू होती है, इवन अक्टूबर 10 तक भी चल जाती है। तो
1: जी
0: उस टाइम तक हमारा पहला गुच्छा तैयार मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है, अक्टूबर की आखिर में हम उसको काट लेते हैं। तो हमारा पहले जो गुच्छे कटने के तक हमारे को पानी की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपके पास है तो आप 25 से 30 दिन के बीच अंतराल पर एक दे दो सर्दियों में, और 20 दिन के 25 दिन के अंतराल में गर्मियों में दे दो
1: जी
0: एक पानी अगर आप।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें गुच्छे कितने के विकसित हों और कितने दिन के बाद में तोड़ने चाहिए, उसका क्या तरीका रहेगा?
0: सर जो गुच्छा बनता है इस फसल में, आप ये मानिए कि 95 से 105 दिन के बीच में पहला गुच्छा बन के तैयार हो जाता है। और
1: जी
0: उसकी आपने जो पूछा है कि किस स्टेज पे हम काटें, जब भी 10% वो गुच्छा जैसे हरे रंग का है तो वो थोड़ा सा
1: भूरा भूरा
0: बूरा
1: सा
0: बूरा सा
1: बदलना
0: होना
1: शुरू
0: लग
1: हो जाए।
0: जाए,
1: जी
0: या अरे में भी ज़्यादा हरा सा दिखने लग जाए, जो सच उसका सही कलर है उससे थोड़ा सा 10% अगर वो गुच्छे अगर अपना रंग बदल रहे हैं तो
1: जी
0: आप उसको उस टाइम काट दो,
1: जी
0: सारे गुच्छों को काट दो और एक कड़का पानी दे दो और 8 किलो यूरिया ले दो, तो
1: जी
0: उससे आपकी पैदावार है वो बहुत अच्छी भी होगी और बढ़ेगी भी।
1: तो जो हमने गुच्छे तोड़ लिए हैं, काट लिए, जिसमें थोड़ा सा हरापन रह रहा है,
0: जी
1: तो उसका क्या करना, किस तरह, मतलब उसको धूप में सुखाना
0: उसको
1: है
0: आप
1: या
0: सर
1: क्या?
0: जहाँ आपके पौधे हैं वहाँ एक जगह भंडारण कर लो,
1: जी
0: एक जगह आप उसको भंडारण करके रख लो धूप से, वो आपको देखोगे 5 से 7 10 दिन में भूरा हो जाएगा। फिर आप उसको जहाँ इकट्ठा करते हो, आपके पास कोई रूम बनाया हुआ है या कोई कमरा है
1: कमरा है,
0: वहाँ आप
1: छांद
0: उसको रख
1: या
0: सकते हो
1: जी
0: और एक साथ निकाल सकते हो, जब 4 से 5 कटाई के बाद आपके पास सारा उसका पैदावार आ जाए या सारे गुच्छे आपके पास आ जाए।
1: जी तो तब तक उनको अलग अलग करके रखते रहें कि भी ये पहली कटाई के हैं, ये दूसरी कटाई के हैं, और उतना समय लेके वो आपके पूरे तैयार हो जाएंगे ये।
0: हाँ जी, जैसे आप ये है कि पहली कटाई दूसरी, देखो वो अपना तो रिसर्च का कार्य अनुसंधान
1: जी
0: कर रहे हैं, हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसान को तो एक ये होता है सर सारी पैदावार एक ही टाइम चाहिए, तो
1: जी
0: उनको
1: जी
0: वो इकट्ठा कर सकते हैं, उसके अंदर जो लकड़ी होती है
1: जी
0: उसको आप लकड़ियों से पीट के और एक साइड कर दो, जो गुच्छे गुच्छे हैं उसको आप भंडारण में रख लो।
1: तो
0: और
1: ये जिसका जो बीज निकालने का वो क्या तरीका रहेगा,
0: बीज का सर
1: क्योंकि इसके ऊपर
0: हमारे
1: कांटे से
0: जी
1: भी
0: जी
1: होते हैं
0: जी
1: तो।
0: जी ये आप जो कह रहे हो कांटे होते हैं, हमारे पास थ्रेसर हैं,
1: जी
0: हमारे जो HCU है अपनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
1: जी
0: इसके अंडर हमने सर हर KV के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमने
1: जी
0: थ्रेसर दिए हुए हैं, बांटे हुए हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट में किसान हैं वो उनको लेके भी जाते हैं, उनको सिर्फ अपनी ID देनी होती है
1: जी
0: और वो वहाँ से थ्रेसर ले जाते हैं अपना और वापिस दे जाते हैं निकाल के।
1: जी
0: तो कहीं कई जगह हमने दो दो तीन तीन भी दिए हुए हैं, जितना वर्कलोड है उस हिसाब से। और अब तो किसान भी अपने मतलब थ्रेसर खुद भी रखने लगे हैं, क्योंकि इसका जिस हिसाब से एरिया बढ़ रहा है या एक तरह से
1: जागरूक
0: इसकी
1: हो
0: जो
1: रहे हैं लोग।
0: जागरूकता
1: जी
0: है, और दूसरी फसलें हैं जैसे आप देखोगे खरीफ में, पहले हम बचपन में देखते थे कि कपास लगती थी, बाजरा लगता था,
1: जी
0: लेकिन अब वो फसलें कहीं ना कहीं मौसम की मार से हमको एक जैसे अब धान पे हम आगे हैं
1: जी
0: कपास की जगह, तो
1: जी
0: वो फसलें अलग मतलब ना बोने की वजह से या वो परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि उसको बो सके, तो कैस्टर अपने आप को मतलब बढ़ा रहा है अपने आप ही।
1: जी यानी कि जिन भाइयों के ये समस्या आती रही है कपास में,
0: जी
1: तो वो इसकी तरफ भाई ध्यान दे सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी दे
1: जी
0: सकते हैं। इसी के साथ सर एक मरगोजा होता है जो सरसों में,
1: जी जी
0: तो उस मरगोजा क्या करता है, सरसों का तो बिल्कुल एक तरह से बहुत पैदावार कम कर देता है, तो
1: जी
0: उस एरिया में भी हम कैस्टर को अरंड को ले सकते हैं।
1: जी और उसके बाद में इसका भाव देख के, कौन सी मंडी में कौन सा भाव क्या कुछ चल रहा है, उस हिसाब से अपने
0: हाँ जी
1: बिक्री कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सर
1: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली, बढ़िया और सभी तरह की ज़मीनों में चलने वाली फसल है ये, और सिंचित अवस्था कह ले और ये वरानी अवस्था कह ले, दोनों में ये अच्छी पैदावार दे देगी, और क्योंकि अब इसका कम जगह पर इसका उत्पादन हो रहा है, तो भाव भी इसके बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर आत्मन पुनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सर।
1: धन्यवाद।
2: तो भैया ने ये तो सुनी बातचीत, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वह जो अरंड की काश्त भाई करना चाह रहे हैं उन्होंने किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, और देखो, हम कोई भी फसल ले रहे हैं उसमें पहले हमने उसकी जानकारी होना जरूरी है। अच्छे बीज, अच्छी उन्नत किस्म, ये लेना बहुत कुछ जरूरी है। और उसके साथ साथ जो खाद पानी का प्रबंधन है वो भी हमारा उसी फसल के हिसाब से होना चाहिए।

0: मैं भी कुछ बात कृषि जगत में थी, और अब जो कृषि जगत कार्यक्रम है उसका तो समय वह समाप्त है। अब कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार में देखो भाइयों, जब हम बात करें भाई आज जो बुजुर्गों से संबंधित, एक जिसको हम विश्व बुजुर्गों के दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो ये जो 15 जून का दिन है वो मनाया जाए। और इसी विषय पे एडवोकेट संदीप कुमार से स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित एक बातचीत है, तो भाई सुने ये बातचीत है।
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतक के माध्यम से मैं एडवोकेट संदीप कुमार आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय लेकर आए हैं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये दिवस हर साल 15 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दुर्व्यवहार और उपेक्षा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना और उन्हें अधिकार दिलाना। आज मैं डीएल से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और श्री अजय तेबतिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम चेयरमैन डीएलएस से एवं मैडम डॉक्टर तरन्नुम खान चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डीएलएस से के दिशा निर्देश के अनुसार आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हुआ हूँ। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, इस दिन की बात करें तो इसके इतिहास के बारे में जाएं हम तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसको बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित करके इसे आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मान्यता दी। दुर्व्यवहार के प्रकार के बारे में बात करें हम तो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कई रूपों में हो सकता है। इसे पहचानना और रोकना बेहद जरूरी है, जैसे कि शारीरिक दुर्व्यवहार, मारपीट करना, चोट पहुंचाना, भावनात्मक दुर्व्यवहार, अपमान करना, डराना, धमकाना, अकेला छोड़ देना, आर्थिक दुर्व्यवहार, उनकी संपत्ति, पेंशन, पैसों का जबरन दुरुपयोग करना, और उपेक्षा, समय पर भोजन, दवा, बुनियादी जरूरतों का ध्यान न रखना। आज के दिन का महत्व ये है कि ये दिन हमें याद दिलाता है बुजुर्ग हमारे समाज की नींव है, उनके अनुभव और ज्ञान का सम्मान किया जाना चाहिए। यह दिन परिवारों, समुदायों, सरकारों को बुजुर्गों के प्रति एक सुरक्षित, सम्मानित, प्रेमपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6 में से एक बुजुर्ग अपने समुदाय में किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उपेक्षा का शिकार होते हैं। यह एक छिपी हुई वैश्विक समस्या है जो कि सारे संसार में फैली हुई है, लेकिन इस पर कोई खुलकर चर्चा नहीं कर पाता, शर्मिंदगी के कारण, अपने समाज में, अपने परिवार में उपेक्षा के कारण। केवल 24 में से एक मामला ही अधिकारियों के पास पहुंचता है। कुछ हम आंकड़ों की बात करें तो सामुदायिक स्तर पर व्यापकता 60 वर्ष से अधिक उम्र के 16% से अधिक बुजुर्गों को हर साल दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। संस्थाओं की बात करें, देखभाल सुविधाओं जैसे वृद्धाश्रम है, नर्सिंग होम है, इनमें काम करने वाले 3 में से 2 कर्मचारियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार किया है। और सबसे आम समस्या है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार में मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक शोषण सबसे अधिक, लगभग 47%, उसके बाद उपेक्षा और आर्थिक शोषण शामिल है। अच्छा, इनकी बात करें हम तो इनमें अपराधी कौन है? ज्यादातर मामलों में दुर्व्यवहार उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन पर बुजुर्ग विश्वास करते हैं, जैसे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और उनके देखभाल करने वाले। कम रिपोर्टिंग, डर और शर्मिंदगी के कारण, आश्रित होने के कारण बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के केवल 24 में से एक मामले ही रिपोर्ट किए जाते हैं। सरकार की बात करें तो सरकार ने बहुत से सरकारी प्रयास, कानून बनाए हैं जो बुजुर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं और कानून लागू किए गए हैं, जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। इसके तहत बच्चों के लिए अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करना और कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है। हम इस कानून की बात करें तो इसको सीनियर सिटीजन एक्ट भी कहते हैं, जिसमें के सेक्शन 23 ये बताती है कि कोई भी आदमी अपने जीवन की जमा पूंजी एक समय के बाद अपने बच्चों के नाम कर देते हैं कि बुजुर्ग जब वो होंगे तो उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे, लेकिन वो बच्चे उनकी संपत्ति लेने के बाद उनके खिलाफ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसमें ये कानून है कि सेक्शन 23 के तहत अगर कोई बुजुर्ग SDM कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करें तो उसकी सारी संपत्ति वापस उस बुजुर्ग के नाम आ सकती है। हम सरकार की और योजनाओं की बात करें तो सरकार ने यातायात के साधनों में छूट की है, 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की पेंशन की योजना है, बैंकों में अलग बैंक खाता सीनियर सिटीजन के लिए, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को सभी बैंक सुविधाएं घर पर ही मिल सकती है। हम बात करें मुफ्त इलाज की तो जिला स्तर पर सरकार ने सुविधा कर रखी है कि कम से कम 10 बेड का एक रिजर्व वार्ड होगा जो सीनियर सिटीजन के लिए होगा और उनको कई तरह के अस्पताल में इलाज भी मुफ्त किए जाते हैं। मैं बात करूं अब DLSA की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तो वो बुजुर्गों के लिए क्या क्या योजनाएं क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, तो सीनियर सिटीजन के लिए DLSA के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता है कि उनको जीवन में कभी भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े कि उनको कोर्ट में केस डालना हो तो उनको वकील की फीस और कोर्ट का खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है, ये सारा खर्चा सरकार वहन करती है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी बुजुर्गों के उत्थान मान सम्मान में अपना योगदान देती रही है और DLSA हमेशा ही इस तरह के मुद्दों को उठाती है जो कि अति संवेदनशील है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आपके यहाँ आए हैं और हमने जो आपको फैक्ट बताए हैं उन फैक्ट के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी आपके आसपास आपके परिवार समाज में बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार हो रहा हो तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे और DLSA की मदद की जरूरत है तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में Gate No. 4 पर ADR सेंटर में आकर भी आप इस तरह की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।
0: तो भैया ने ये तो सुनी बातचीत स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित अधिवक्ता संदीप कुमार जी ने बहुत अच्छी बढ़िया बात बताई और इसी प्रकार जो हमारे दूसरे जो कानून हैं चाहे हम बात करें युवा संबंधी और बाल कल्याण संबंधी और बुजुर्गों संबंधी तो बात हो ही रही थी। बाकी इसमें देखो बच्चों के प्रति भी हम बात करें तो वो भी जो संविधान है हर नागरिक को बिल्कुल जो सुरक्षा की गारंटी देता है और उसमें ये कोशिश रहती है भाई कोई किसी प्रकार का किसी को अन्याय का सामना ना करना पड़े। उसमें चाहे हम बात करें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी, उनके लिए भी अलग से इस तरह का प्रावधान बनाया गया है भाई कोई उनको किसी प्रकार की दिक्कत पैदा ना करे और यदि कोई करे तो उसके लिए जो कानून है वो उनकी मदद करे और समय समय पर इस तरह की जो मदद है वो की भी जाती है। बाकी देखो जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है वो इस आधार पर है कि भाई हमने जैसे पहले बुजुर्ग और अपने जो पुराने आदमी थे वो अपने जो बुजुर्गों की सेवा है वो करते थे, एक जो जिसको हम कहें भाई जिसकी मान लो हम ये कह सकते हैं भाई जिसका यदि किसी प्रकार का कोई साथी ना हो तो एक कमज़ोर की मदद हम इसमें कह सकते हैं, कमज़ोर की मदद करना समाज का एक दायित्व बनता था क्योंकि उसमें समाज का जो ताना बाना है वो गरीब अमीर और हर चीज़ से को देख कर बना है। इसमें जो हमारे बुजुर्ग थे वो आपस में एक दूसरे का बड़ा सहयोग किया करते, जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति से होता जिसके पास आदमियों की कमी होती तो उनका साथ दिया करता और आज भी वही है कि भाई देखो जो सरकार द्वारा संविधान द्वारा जो इस तरह की गारंटी दी जाती है भाई कोई भी किसी भी प्रकार से न्याय से वंचित ना हो, उसमें चाहे हम महिलाओं की बात करें चाहे दूसरे वर्गों की बात करें तो कोई भी किसी प्रकार से यदि न्याय से वंचित रहता है तो वो इसका न्यायालय का दरवाज़ा है वो खटखटा सके है और इसमें अपना जो सहायता है वो ले सके है। भाई जो ग्रामीण संसार कार्यक्रम है उसका समय समाप्त, सारे बाण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज़्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1.13 करोड़ हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे MoHUA डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
2: बहुत चीज़ें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुँच गया है। इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं पानी के कनेक्शन दिए हैं। तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े। लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
2: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीज़ें खास करके ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा? कैसे समझे इसको?
2: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
2: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा साथ कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी, जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1, अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
2: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
2: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
2: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
2: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेडी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेडी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर

0: 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1.5 करोड़ लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए। कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1.5 करोड़ लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है। और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे, और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी

0: दो किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000। 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे। ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूँ, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंडर पाइपलाइन है, कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा है कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज। Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws under the Jan Vishwas framework. India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low-trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question that one

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब सुनते हैं गुमशुदा की तलाश हेतु सूचना। गुमशुदा का नाम है पार्वती, पति का नाम रामेश्वर, चेहरा गोल है, उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फुट, रंग सांवला। पार्वती ने घिया रंग का सूट और सलवार पहने हुए है, कानों में आर्टिफिशियल झुमके पहने हैं और पैरों में काले रंग की चप्पल है। जिस किसी को इसकी सूचना प्राप्त हो वो देवीपुरा गोहाना पुलिस चौकी को सूचित करें। गुमशुदा का नाम किरण कुमारी, पिता का नाम भोगेंद्र बैठा, किरण कुमारी की उम्र 14 वर्ष है, इसका रंग सांवला, कद 4 फुट 6 इंच, लाल पाजामा और हरे रंग की स्वेटर पहने हुए है। जिस किसी को किरण की सूचना प्राप्त हो वो थाना शहर बहादुरगढ़ को सूचित करें। इसी के साथ गुमशुदा की तलाश हेतु सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपने दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए चंद प्यारे से गीत। आइए आगाज करते हैं इस नगमे के साथ।

जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने और फिल्म का नाम था बड़ा दिन। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। साथियों, गीत हमारे मस्तिष्क के रिकॉर्ड सेंटर को सक्रिय करके डोपामिन यानी कि खुशी देने वाले हार्मोन का स्राव बढ़ाते हैं, जिससे हमें शांति भी मिलती है और उल्लास का भी अनुभव होता है। तभी तो हम सभी को गीत सुनना पसंद है। साथियों, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी संगीत कई तरीके से हमें आनंदित करता है। गीतों की लय और बोल हमारे अवचेतन मन से सीधे जुड़ते हैं, जो तनाव को दूर करके हमें सुकून का एहसास दिलाते हैं। तो सुकून का एहसास दिलाने के लिए ये गीत आपकी नज़र।

साथियों, ये नगमा आप सुन रहे थे फिल्म आजा नचले से। आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। गीत के बोल लिखे थे जयदीप सहनी ने और संगीत से सजाया था सलीम सुलेमान ने। साथियों, संगीत हमारे मस्तिष्क की यादों को ताज़ा कर देता है, जिससे हम खुशी के पलों में खो जाते हैं। और साथियों, आप जानते ही होंगे कि संगीत सुनने से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन, जिसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं, उसका स्तर काफ़ी कम हो जाता है और शरीर का ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है। तो साथियों, आपके दिन के प्रेशर को ख़त्म करने के लिए ये खूबसूरत गीत आपकी नज़र।

साथियों, ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म करीब से। आवाज़ें थी कुमार सानू और संजीवनी की। गीत के बोल लिखे थे राहत इंदौरी ने और संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। साथियों, हमारी प्रकृति भी संगीत से भरी हुई है और प्रकृति के संगीत

बहती हवा की सरसराहट, बहते पानी की कलकल, पक्षियों की चहचहाट, बारिश की बूंदें और कीटों की झंकार शामिल है। ये संगीत इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि ये तनाव तो कम को करता ही है, साथ ही मन को भी शांत करता है और मस्तिष्क की तरंगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

साथियों, ये नगमा आपने सुना फिल्म बाजीगर से। आवाज़ें थी कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की। गीत के बोल लिखे थे रानी मलिक ने और मौसीकी थी अनु मलिक की। साथियों, संगीत सुनें, किताबें पढ़ें, सैर करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने हर दिन को, हर पल को सार्थक ज़रूर बनाएं। साथियों, सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि हम अपनी सुबह की दिनचर्या को शांत रखें, व्यायाम से शुरुआत करें, गहरी सांस लें, योगा करें या कुछ भी करें। और एक काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जीवन को लेकर अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहद ज़रूरी है। वो बेशक पढ़ाई को लेकर हो, काम को लेकर हो, व्यक्तियों को लेकर हो, आवागमन को लेकर हो या किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, लेकिन अपनी प्राथमिकताएँ ज़रूर तय करें और अपने हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और फिर उसे पूरा करने का प्रयास करें। और अब हम प्रयास करते हैं आपके मनोरंजन का इस गीत के साथ।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म दीवानगी से। आवाजें थी कुमार सानू, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, और मौसीकी थी इस्माइल दरबार की। साथियों, जीवन में हमें एक चीज बेहद जरूरी है, वो ये कि हमें सीखने की आदत लगातार रखनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम लगातार जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहें। बेशक कोई किताब पढ़ें, उससे कुछ सीखें, या चित्रकारी करें, या कोई भी नया कौशल सीखें। ऐसा करने से हमारी दिनचर्या भी अच्छी रहती है और हमारा मस्तिष्क भी सुचारू रूप से कार्य करता है। साथ ही हमें जीवन के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए इस प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का, प्रत्येक वस्तु का, क्योंकि ये ज़रूरी भी है और ये मानसिक शांति और खुशी भी देता है। और इसके अतिरिक्त साथियों, एक चीज़ जो आज बेहद ज़रूरी है वो ये कि हमें स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए, क्योंकि हम फ़ोन या सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, जिससे हमारी आँखों को भी हानि होती है, मस्तिष्क को भी होती है और समय भी ख़राब होता है। इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स होना बेहद ज़रूरी है। और साथियों, इसके अतिरिक्त जो एक और चीज़ बेहद ज़रूरी है वो ये कि हमें स्वयं की देखभाल रखना कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा खुद को रिचार्ज करें, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही आती हैं।

तो साथियों अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपने हर पल का सदुपयोग करें। इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 265.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार थे जगजीत सिंह। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, या अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: सतर्कता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
8: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
7: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
8: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है. डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी. रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है. इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया. इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी.
7: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
8: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है. हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे.
7: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
9: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
7: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
10: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group for counter-terrorism and establishment of consular dialogue. With the report of Smriti M. Pulluruthi, Rupesh Rao, Akashvani News.
7: Later, Prime Minister Modi also met Slovakian President Peter Pellegrini in Bratislava. Mr. Modi reached Slovakian capital last night after concluding his visit to the French city of Nice. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Ukraine, Qatar and United Arab Emirates have also been invited for the summit. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon tomorrow to participate in the summit. We now go over live to our correspondent Ankit Kumar, who is now in Avignon tracking developments on the G7 summit. Ankit, how are the G7 leaders translating their recognition of India's strategic importance into practical cooperation on trade, technology, manufacturing and supply chain security? And what outcomes are expected from this summit?
11: Yes, Nishit. India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in the concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement, as well as initiatives such as Bharat Innovate in Nice, and India's role as the official AI partner country at the upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market, but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing, and resilient supply chains. Significantly, if you see, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including balanced growth, international partnerships, and artificial intelligence, closely align with India's strength and interests. Therefore, beyond the broader geopolitical discussions, the key outcomes to watch will be deeper cooperation in trade, technology, critical minerals, innovation, and investments, as well as how India's perspective and the concerns of Global South are reflected in the summit's deliberation and outcomes. Nishit.
7: Yeah, thank you, Ankit, for the update. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. Defence Research and Development Organisation, DRDO, today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Minister said that the missile achieved all mission objectives, demonstrating India's growing long-range precision strike capability. Raksha Mantri Rajnath Singh congratulated the DRDO team and the industry partners on the successful flight test of the cruise missile. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government for building modern infrastructure with the vision of making India Viksit Bharat by 2047.
2: Over the past 12 years, India has embarked on an unprecedented journey of transformation, making infrastructure-led development the cornerstone of its growth story. This commitment is reflected in a six-fold increase in government expenditure on infrastructure, rising from 2 lakh crore rupees in 2014-15 to 12.2 lakh crore rupees in the current financial year. India's metro rail network has expanded nearly fivefold to 1,100 kilometers. Talking to Akashwani News, a Delhi resident, Alisha, who commutes with Delhi Metro daily, has shared her experience.
3: Metro to hamari lifeline ban chuki hai.
12: Metro has really become our lifeline. I have to go to Gurugram every day for my office, for which I use the metro. Traveling in the metro is convenient and comfortable. But along with that, the good thing is that it is completely safe. Because of its being safe, my family and I remain worry-free.
3: Chinta mukt rehte hain.
2: The national highway network has expanded from over 91,000 kilometers in 2014 to over 1,46,000 kilometers in 2026. Budgetary support for Indian Railways has increased nearly 9 times. This investment has powered modernization and improved passenger experience across the network. A symbol of this new era is the Vande Bharat train, with 162 services now operational, it reducing travel time up to 45%. Talking to Akashwani News, a frequent traveler of Vande Bharat from Lucknow, Pooja said that the train is comfortable and it saves a lot of time.
3: Traveling in the Vande Bharat train brings immense joy. Ever since the Vande Bharat train services started, we mostly travel by it. It is an absolutely excellent train, and the best part about it is that it saves a lot of time during the journey and the seats are very comfortable.
2: Together, these achievements are creating a faster, more connected and more prosperous India, laying the foundation for a Viksit Bharat by 2047. Saklain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
7: Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to land in Jewar from Lucknow this morning. India has welcomed the understanding reached between the United States and Iran on ending the conflict in West Asia and opened the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said, India hopes the implementation of the understanding will help restore peace and stability in the region and ensure the freedom of navigation and commerce. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Meanwhile, hours after the United States and Iran announced the peace deal, Israeli Defense Minister Israel Katz has declared that the Israeli military will not pull back from its position across the border. While detailing Israel's security policy, the defense minister stated that the Israel Defense Forces will remain indefinitely in security zones in Lebanon, Syria, and Gaza to protect Israeli citizens. Israeli media reported that Jerusalem has directly communicated its refusal to comply with international withdrawal timelines to U.S. President Donald Trump. The benchmark domestic equity indices today ended trading session with strong gains of nearly 1%. Investor sentiment improved following the announcement of a peace agreement between the United States and Iran. The Sensex surged 736 points to close at 76,264, while the Nifty jumped 231 points to settle at 23,854. The government has said that all refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories and maintaining sufficient stocks of petrol and diesel. Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, was addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia. Joint Secretary in the Department of Fertilizers, Bandana Prayashi, said that the overall stock position of fertilizers in the country is normal. Director in the Ministry of Port Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said that the LNG carrier Disha, with 62,370 metric tons of cargo, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to reach the Dahej port in Gujarat on Thursday. In the FIFA World Cup football, Spain will play against Cabo Verde in their Group H clash at Atlanta in the United States tonight. The match will begin from 9:30 p.m. Indian time. Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match in Mexico earlier in the day. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The Met Department has issued an orange colour warning for thunder squall conditions in West Rajasthan for tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Bihar, the Andaman and Nicobar Island, Chhattisgarh, Karnataka, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, West Bengal and Sikkim during the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labour migration, digital technology and defence. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. The friend city of Ovion gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in the US tonight. And that's all in the news at night. Good night.
13: मीडियम वेव 265.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारी आज की फिल्म का नाम है जब वी मेट। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, खुद से प्यार करें और हर समस्या का समाधान आप बहुत जल्द ढूंढ सकते हैं। ये फिल्म हमें खुलकर जीना और वर्तमान में खुश रहना सिखाती है। पेश करते हैं इसी फिल्म के चंद नगमे। आइए आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

साथियों, ये गीत आपने सुना मीका सिंह और साथियों की आवाज़ों में। इस फिल्म का एक मशहूर संवाद है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। साथियों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि दूसरों की खुशी के चक्कर में खुद को कभी न भूलें, अपनी अहमियत को ज़रूर समझें। साथ ही साथियों, इस फिल्म से हमें ये भी पता चलता है कि योजनाएँ हमेशा काम नहीं करती। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और हर पल का आनंद लें।

आती है कि अगर हमारे किसी साथी के जीवन में किसी कारण से निराशा या हताशा आ गई है तो उसके जीवन को ऊर्जा देने का प्रयास करें, उसके जीवन को रोशनी से भरने का प्रयास करें, मुश्किल वक्त में उसका सहारा बने। साथ ही जीवन में कभी पीछे मुड़कर न देखें, न पछताएं, आगे बढ़ें और हमेशा अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करें और ज़िंदगी को भी एक मौका ज़रूर दें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। हमारी आज की फिल्म थी जब वी मेट। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और

0: 0408-2371-7117 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग, और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी
0: जी। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे ही आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
0: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी, और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जब भी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है, तो आप हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
0: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहाँ तक आपने बोला है कि गले में है, तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें, तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से, रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछे क्या सवाल है आपका?
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व, ये सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
1: धन्यवाद रवि जी। और आपका जो आप प्रश्न है उसमें ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है। ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना, छोड़ना,

0: सांसों के साथ कर सकते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी ज़रूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज़्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
1: जी,
0: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
1: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
1: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफ़ी कम हो जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे सांस धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
1: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
1: जी,
3: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
1: जी,
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
1: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
1: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
1: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
0: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
1: जी,
0: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो
0: उसको हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं, रोटेशन के साथ हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है, इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
4: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
2: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुँह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुँह में पानी भर के आँखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आँखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आँखों को घुमाना, वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना,
1: नहीं करना
2: पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
5: हेलो, नमस्कार, मैं मुकेश जी।
1: जी नमस्कार,
5: दोनों विशेषज्ञ, मेरा नाम नमस्कार है
1: जी, सवाल पूछिए।
5: हम बड़ा सवाल ये है कि
1: शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
2: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है जी, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
6: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका?
6: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
6: डीजी और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
2: नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
6: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
1: जी,
6: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी
0: जी,
6: और योगा करने से वो ये होगा
0: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज़ एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफ़ी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
2: प्राणायाम और आसन
1: जी।
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग हैं।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
7: जी धन्यवाद, प्रणाम करते सर
1: जी, बताइए
7: सर। जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
2: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
1: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
2: देखिए, आँखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आँखों को धो लें पानी से
1: जी।
2: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आँखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आँख में। जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आँखों की दवाइयाँ आ गई हैं। और जहाँ तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातःकाल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
1: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार। पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे प्रधानमंत्री।
1: आपको भी शुभकामनाएं जी। सवाल पूछिए।
8: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
0: धन्यवाद रशीद जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आँखों में कुछ भी डाल लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज़्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आँखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले भी बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आँखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
2: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
1: जी,
2: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो है ध्यान का, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
1: जी,
2: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
0: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
1: जी।
0: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
1: जी।
0: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज़ भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत तेज करने लग जाते हैं,
1: समय की
0: फायदा नहीं होता, नुकसान होता है
1: जी जी जी।
0: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
1: जी।
0: और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुख आसन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
9: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
2: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मुंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है, तो ये कुछ प्राणायाम हैं जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें उसके बाद करें।
0: इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है, बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका।
10: नमस्कार।
1: नमस्कार,
10: मैं धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
2: घर घर की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए, जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूँगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे ज़रूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना ज़रूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
0: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमा शंकर वाजपेयी। रमा शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी,
11: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
1: जी,
11: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
1: जी
0: रमा शंकर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगा ही नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज़्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका।
12: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गए या बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल्स रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोग ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
2: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी ज़रूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके उस संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
2: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
0: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज़्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पर असर होता है, तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
13: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज की कलाकार हैं दीपा शर्मा। आज आप सुनेंगे राग यमन।

अब प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपने दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस दिन का हमें भी रहता है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं आपके द्वारा लिखे गए प्यारे प्यारे पत्र और पूरी करते हैं आपकी फरमाइशें। तो आइए आगाज करते हैं इस पत्र के साथ जो हमें लिख भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। हमारे साथी हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। ये पत्र आया है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा और इनका समस्त परिवार। महाराष्ट्र हिंगोली से लिखते हैं शाहजी बोड़खे, नंदा, हनुमान, उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े और इनका पूरा परिवार। और ये पत्र हमें लिखते हैं राजनगर मधुबनी से। हमारे साथी हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र, रिद्धि। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक, पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से लिखते हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी, कोमल, मीनका, माधवी, साध्वी, तन्मय।

ये पत्र आया है छत्तीसगढ़ बेमेतरा से। आप हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या सुषमा सारथी। नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और इनका पूरा परिवार। और ये पत्र है मछली गोदाम रायगढ़ से। आप हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, लीलू सिंह, रितु सिंह। धनबाद झारखंड से लिखते हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका, बेबी स्मृति। झाझा बिहार से आप हैं संजीव कुमार सिंह, पूजा, रवि, आरती सिंह। पटना बिहार से लिखते हैं भुवनेश्वर सिंह और लीलू सिंह। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला नगमा।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म अंदाज से और आवाज़ थी मुकेश कुमार की। और अब उठाते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र जो हमें लिख भेजा है डब्वाली हरियाणा से। आप हैं जे के बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल और मीनू। और अगला पत्र हमें लिख भेजा है अलीका डब्वाली से। आप हैं बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। और ये पत्र आया है नांदेड़ से। आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार, साई, पूंजा जी नवहावकर और विशाल नवहावकर। और ये पत्र है खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आप हैं तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन और अंकुश अरोड़ा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से लिखते हैं हरदीव मीका, बलविंदर बीरक, जयतीक,

और मीका बीरक। और अगला पत्र हमें लिख भेजा है परमीलागंज आलोट मध्य प्रदेश से, आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से हमारे श्रोता हैं महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र शाह, हर्षित और मानसी शाह। छत्रपति संभाजीनगर से लिखते हैं राजेश असावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। जलगांव सोमनाथ जालना से लिखते हैं डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, गणेश, कार्तिक, अश्विनी, वैष्णवी, हर्षुल और साथ ही लिखते हैं वैभव, गौरव, भाव सिंहपुरा, मेघराज, युवराज, रिधोरा और इनका समस्त परिवार। और ये पत्र हमें लिख भेजा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, आप हैं अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, एकांश गवहानकर, वैशाली, सुमित, ध्वनि गवहानकर। बदलापुर मुंबई से लिखते हैं सिद्धांत और प्रणीता गवहानकर। और ये पत्र हमें लिख भेजा है चकला बाज़ार सामाना से, आप हैं पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और इनका पूरा परिवार। और ये पत्र हमें लिख भेजा है जामभरून से, ये पत्र आया है, लिखने वाले हमारे साथी हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी और गणेश। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अगला नगमा।

ये खूबसूरत नगमा आपने सुना फिल्म आंधी से। युगल स्वर थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। और अब उठाते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र, जो हमें लिख भेजा है हमारे नियमित श्रोता हैं। गांव पांडुपिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल और डॉक्टर वानिका। गांव नथाना पंजाब से लिखते हैं हरजिंदर छिंदरा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हमारे साथी हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति और सरोजिनी। मॉडल टाउन करनाल से लिखते हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, नरेंद्र तनेजा, सुनीता जैन, किरण ठाकुर, सुनीता शर्मा और ईश्वरप्रीत शर्मा। अगला पत्र आया है धामणी मानोरा से। लिखने वाले हमारे साथी हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे। और ये पत्र लिखा है मुक्तसर से। आप हैं बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु। आदर्श नगर मलोट से लिखते हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मेहंदी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। और ये पत्र हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से। आप हैं सुभाष चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान, अनुष्का। शालर पहलगांव कश्मीर से लिखते हैं पीरजादा मेहरुद्दीन, कैशरुद्दीन और नजमुद्दीन। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से आप हैं अशोक श्यामकुंवर, दीपक श्यामकुंवर, प्रमीला और ज्योति श्यामकुंवर। और पटेल नगर मलोट पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। तो साथियों, सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

फिल्म चौदहवीं का चांद का टाइटल ट्रैक आप सुन रहे थे मखमली आवाज़ रफ़ी साहब की। और अब बताते हैं आपको अगला पत्र हमें लिख भेजा है गोला बाजार बक्सर से। आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। पुणे से आप हैं पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका। जरूर वरुड़ से लिखते हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे। और ये पत्र हमें लिख भेजा है वाशी महाराष्ट्र से। आप हैं ऋचा, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्विनी कुलकर्णी, कल्पना पांडे, सुनीता पांडे, मालती, संगीता रेघाटे, उषा रेघाटे, छाया बोरफर, तृप्ति श्रृंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू और जीतू। और लक्कड़ बाज़ार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकीब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाज़ार चौक ग्राम दीवाल से लिखते हैं शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका। ग्राम छैगा ज़िला खंडवा से लिखते हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे। मलोट कैंप पंजाब से लिखते हैं सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर सिंह, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। और ये पत्र है अनुरोध करता है आदर्श गांव बलियाली ज़िला भिवानी हरियाणा से हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी, कमल कुमार, प्रवीण कुमार, ममता रानी, गर्विश और तमन्ना बंसल। और अगला पत्र है गोविंदगढ़ माझीवाला राजस्थान से। आप हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, आदित्य, भूमि, अमृत, शिव सेठी और इनका समस्त परिवार। और इसी कड़ी में ये पत्र हमें लिख भेजा है गांव नथाना पंजाब से हरदिन जिंद्रा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। छोटी बलिया मुंबई से लिखते हैं अहमद बाई फूलवाले, दुखना रानी, जूही इकबाल फूलवाले, आमना, नशरीन और इमरान अहमद फूलवाले। और ये पत्र लिखते हैं अनारकली बाज़ार जगराव से। आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, आशीष, गाव्या और सूचा पाठक। और इसी कड़ी में ये पत्र हमें लिख भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से लिखते हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुरा कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। और ये पत्र लिखा है खैरका सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन और हनीकोट। और डब्बाली से लिखते हैं दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर और हनी लॉट। और इसी कड़ी में ये हमारे पास एक और पत्र आया है, ये हमारे साथी हैं नया पारा भिरई से। आप लिखते हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईश्वर राज, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी। डोंगर गांव से लिखते हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मानोरा वसीम से लिखते हैं ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस और प्रणीता। पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं शैलेशपुरी, सोनमपुरी और धनुषपुरी। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, ईशिका और तेजल। आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये नगमा।

तो साथियों, हमारा भी वादा है आपसे कि हमारा और आपका साथ भी यूं ही बरकरार रहेगा। और साथ ही हम देते हैं अपने सभी श्रोताओं को धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमें पत्र लिखते हैं और कार्यक्रम सुनते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त हितेश को अनुमति दें कार्यक्रम मनचाहे गीत को यहीं संपन्न करने की। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना

0: आहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Ministry said that the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capabilities. Union Public Service Commission UPSC today declared the result of Civil Services Preliminary Examination CSE for this year. UPSC informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of the final result. The candidates can download the prelim result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to operate from Noida International Airport, with the inaugural flight landing in Jewar from Lucknow this morning. In the FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Carabao underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम फिर उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। अब अनुमति दीजिए। जय हिंद।